0: और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
1: K2 ड्राइव मतलब
0: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
1: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
0: 100%
2: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। K2 ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
3: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
4: Excuse me. It's called being loyal.
3: It's called being predictable.
4: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
4: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
4: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
4: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
5: इससे पहले कि आप इसे एक ad समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। याद है आपको? जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे, मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी। अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास। बसंत मेला 31 मई, हैगड़ पार्क, लालो, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर। स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरी के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us।

तू आया मेरी दुनिया में जैसे कोई नसीब होगा। दोस्तों यारों, मैं हूं पारो। चलेगा हमारा ये शो रात के 9 बजे तक। सो इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड, आप जानते हैं नंबर टू द स्टूडियो 9723555555 पर कॉल कर सकते हैं। क्या करेंगे आज की बात वो बताऊंगी आपको थोड़ी देर में, बट फिलहाल इफ यू वांट टू शेयर व्हाट यू डिड ऑन मदर्स डे, क्या किया आपने संडे को। एंड द वेदर वॉज काइंड ऑफ स्ट्रेंज, थोड़ा लुका छुपी खेल रहा था मुझे ऐसा लगता है हमारे साथ, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश आ गई थी अचानक से और फिर उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो गया था बीच में, आफ्टरनून में थोड़ा रेस्पाइट मिला था, बट देन अगेन काफी तूफान एंड स्टॉर्मी वेदर हो गया था। तो वेदर थोड़ा सा लुका छुपी खेल रहा था, सो मे बी अ लॉट ऑफ पीपल हैड प्लान्स दैट दे हैड टू कैंसिल और पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर एबल टू स्पेंड सम टाइम विद योर लव्ड वंस एंड विश द मदर्स इन योर फैमिली, द वुमेन इन योर फैमिली, दोज हु आर मदर्स और मदर फिगर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: लेट मी टेल यू अबाउट देसी मंडी व्हिच इज द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन. जी हाँ, DFW का ये सबसे बड़ा साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर है. एंड दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय देसी मंडी. देसी मंडी हैज अमेजिंग ऑफर्स. इफ यू आर क्रेविंग मोर फॉर लेस, दिस वीक हैज यू कवर्ड. जैसे कि मंडे और वेंसडे, यानी कि आज है मंडे, वेरी स्पेशल डे, मंडे द बिगिनिंग ऑफ द वीक. यस, मंडे और वेंसडे को बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस. ट्यूजडे और थर्सडे को यू कैन बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसास एंड चाट्स. एवरी वीक डेज आपको ये मिलेंगे ऑफर्स 5 PM to 9 PM. यानी कि आज अगर आपका मन कर रहा है या तो बिरयानी, नूडल्स या फ्राइड राइस डबल डोज खाने का या फिर किसी और के साथ शेयर करने का, दिस इज अ परफेक्ट टाइम वेयर यू हैव टू गो. लेट मी टेल यू दैट. बट उसके पहले उसके थोड़ा सा बता देती हूँ. नो मिक्स एंड बैच, TNC सप्लाई. दिस इज अबाउट अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स एंड अ लॉट ऑफ सेविंग्स ऑल वीक लॉन्ग. कहाँ है देसी मंडी? दिस इज लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सस में है. तो लुइसविल टेक्सस का जो देसी मंडी है वहां आप जा सकते हैं. एंड आज आपको मिल जाएगा बिरयानी, नूडल्स और फ्राइड राइस पे बाय वन गेट वन फ्री अंटिल 9 PM. गाना सुनना चाहते हैं और कुछ हमारे मित्र पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द थीम, वी गॉट टॉक अबाउट दैट इन अ लिटिल बिट एट 7:30. बट फिलहाल अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं, क्योंकि गाने आपके पसंद के चलाएंगे शाम के वक्त, जो भी आप सुनना चाहते हैं, सॉफ्ट हो सकता है, फास्ट हो सकता है, बट बहुत सैड या बहुत स्लो और बहुत पुराने हम नहीं चलाते हैं, बिकॉज इट इज इवनिंग, लॉट ऑफ पीपल आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम वर्क. सो यस, दे वॉन्ट टू फील rejuvenated and ready for the evening.
1: Oi, Captain.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
2: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: चिकन बनाना ब्रो, बनाना नहीं बनाना, मतलब मेक द चिकन राइट।
8: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
9: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड, रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो। विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्डसन एंड नाउ आवर न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121। वेदर यू आर डाइनिंग इन, टेकिंग आउट और केटरिंग, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

We are back to our last hour of the last 30 minutes of the program. जी हाँ, बिल्कुल आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए हैं. ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हैं एंड आई हैव सम रिक्वेस्ट. अगला गाना मैं चलाऊंगी. अशोक साहब ने 90s की यादें ताज़ा कर दी और मीनाक्षी शिशाद्री जो हमारे डालस की ही हैं, कई साल हमारे डालस में हमारे बीच में रही हैं. मैं उनसे कई दफ़ा मिली हूँ, उनके साथ डांस भी मैंने सीखा है. कह तो नहीं सकती कि मैंने उनके साथ डांस करा है बिकॉज शी इज़ सच एन एक्सपर्ट डांसर, लेकिन थोड़ा बहुत उनसे सीखा है. एंड so I'm going to play this song, Ashok Sahab, for you.

बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है कुमार सानू साहब की आवाज़ सुनी है बहुत टाइम बाद, इसलिए क्योंकि आई थिंक लास्ट फ्यू सॉन्ग्स अभी मुझे लग रहा है कि क्यों नहीं मैंने कुमार सानू साहब के गाने चलाए, बट आई थिंक जो आप रिक्वेस्ट करते हैं मैं वो चलाती हूँ. बट 90s की अगर बात करें तो कुमार सानू साहब वॉज अ सेंसेशन फॉर कंटिन्यूस फॉर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम आशिकी 1990 से लेकर 1994 आई बिलीव, लाइक पूरे 5 साल तक ही वॉज कंसिस्टेंटली विनिंग फिल्म फेयर अवार्ड. मुझे लगता है कि अगर वो डटे रहते लगे रहते तो शायद किसी और को मिलता ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड, बिकॉज ही वॉज सच अ सेंसेशन एट दैट टाइम. लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग इन अ लिटल बिट, वी आर आल्सो गोइंग टू डू अ गिव अवे.

दोस्तों यारों, मैं हूँ पारो। अब बात करते हैं हमारी गिव अवे की। सो दिस इज अ गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स। बट पहले मैं आपको चंडीगढ़ बाइट्स के बारे में बता देती हूँ। चंडीगढ़ बाइट्स के बारे में कौन नहीं जानता वैसे, लेकिन फिर भी आई डू वांट टू रिमाइंड यू दैट वेयर इट इज। चंडीगढ़ बाइट्स इज लोकेटेड ऑफ मैकडरमिट ड्राइव इन एलन, एंड यू कैन विजिट chandigarhbites.com फॉर डिटेल्स। नाउ यस, योर चांस टू विन द कड़ाई पनीर और कड़ाई चिकन। आप या तो कड़ाई पनीर या कड़ाई चिकन वहां से ले सकते हैं, चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन से। प्लस सो दिस इज द गिव अवे। लेकिन अगर आप वहां जाएं तो यू कैन एंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच, एंड दैट इज लंच ओनली, एंड दैट दे हैव एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली, हर रोज बदलती हैं। और अब है सवाल, जैसे कि आप जानते हैं, मुझे जो हमारे बॉलीवुड की फिल्मों की कहानियां होती हैं और कहानियां लिखने वाले, लिरिक्स लिखने वाले राइटर्स बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनकी कई बार बात कम होती है लेकिन सब बहुत बड़ा काम करते हैं। वो जो कहानियां इतनी हमारी इतना हमें इम्प्रेस करती हैं, वो कहानियां उन्होंने ही लिखी होती हैं। ये कंसेप्चुअल जो कंसेप्चुअलाइजेशन है वो उन्होंने किया होता है। तो अगला जो मैं गाना चलाने जा रही हूं, ये गाना सुनते ही आप समझ जाएंगे कौन सी फिल्म है। 2014 की फिल्म है, बहुत फेमस फिल्म है। इस फिल्म को दो लोगों ने लिखा, एक तो इनके डायरेक्टर हैं, उनका नाम नहीं चाहिए मुझे ये स्क्रीन राइटर का नाम चाहिए, क्योंकि ये जो स्क्रीन राइटर हैं, ही इज डायरेक्टर, तो खैर उन्होंने अपना बीच में लगाया होगा थोड़ा कि ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो, लेकिन ये जो स्क्रीन राइटर हैं जिनका मुझे नाम चाहिए, जिन्होंने ये गाना जैसे चलेगा तो उन्होंने लिखी है ये फिल्म, क्योंकि उन्होंने और कुछ बहुत अच्छी फिल्में लिखी हैं। एंड ही टीचेस इन ओहायो, ही टीचेस क्रिएटिव राइटिंग, ही इज ट्रूली एन एक्सीलेंट राइटर एंड अ राइटिंग प्रोफेसर। कौन है ये? 9722355555 पर बताइए। The first person to give the right answer is going to win Chandigarh Bites ki ya to kadai paneer ya kadai chicken. Ah!

थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज. एंड आई नो मैं ज्यादा कॉल नहीं ले पाई, बहुत सारी बज रही थी लाइन्स, बट वक्त उतना ही होता है. एंड इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी इतने देर में अगर कोई ड्रॉप हो गई तो आई एम नॉट एबल टू टेक. एंड द विनर इज अदिति मुखर्जी. अदिति मुखर्जी, आपको मुबारक हो चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से, कड़ाई पनीर या कड़ाई चिकन. फनी शेरी, यू आर ऑन ईयर. अभिजात जोशी, एब्सोल्युटली राइट. विनर मुझे मिल गया, बट थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. बिल्कुल, हमारा ये गिव अवे के अब तो वक्त हो गया बिकॉज वी गॉट द विनर. एंड मुझे लग रहा था शायद थोड़ा सा मुश्किल हो क्योंकि बहुत सारे लोग, राजकुमार हिरानी साहब ने भी ये लिखी है, डायरेक्टर है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने भी अपना इनपुट उसमें दिया ही होगा. लेकिन अभिजात जोशी इज वेरी वेल नोन फॉर हिज स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज एंड हिज स्क्रीन प्ले. जैसे मैंने कहा, ओहायो में वो पढ़ाते, शायद अभी भी पढ़ाते हों, बट ही एक्चुअली इज ऑन, ही हैज बीन अ फैकल्टी एंड ही हैज टॉट देयर एज वेल इन सेंट्रल ओहायो. इट्स अ यूनिवर्सिटी कॉल Otter Bean University in Westerville, Ohio, and I think he has also he has a qualification as well in the US in creative writing. So he's pretty he's pretty well known as a writer. So ye kahani bhi bahut achhi hai. Aur interesting baat ye hai ki jab ye maine film dekhi thi to mujhe iski kahani hi sabse zyada achhi lagi thi, PK. Aur maine tab thodi research kari, maine socha ki yaar ye dekhte hain kisne ye kahani likhi hai, kyunki jis bande ne likhi hai usko likhna aata hai. Aur fir usme naam aaya Abhijat Joshi ka, and then I saw what the other films that he has written, and all of them are really really well known for the story, not just every matlab bahut sari cheeze hoti hain film mein, dialogues and all that and screenplay, but jo story hoti hai unki, Abhijat Joshi sahab ki, bahut achhi hoti hain. Jo bhi unhone kahaniyan likhi hain, jis bhi filmon ko unhone apni kahaniyan di hain, bahut achhi di hain. So I must say that. And ek choti si request hai, lekin wo hum kal karenge baat with giveaway. Jab log giveaway ke liye call karte hain to it's a lot of times people give a lot of other information, लेकिन वक्त कम होता है तो कई बार वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो बट विल टॉक अबाउट दैट टुमारो, बिकॉज ये गिव अवे तो हो गया है. बिकॉज दैट वेज क्या होता है कि कुछ लोगों को मौका नहीं मिल पाता, कुछ लोग अगर ज्यादा बात करते हैं तो, सो इट हैज टू मूव रियली फास्ट, बट वी विल टॉक अबाउट दैट टुमारो, क्योंकि ये चीज तो हो गई है और थोड़ा सा ही वक्त बचा है फॉर अ शो टू एंड. मुन्ना भाई MBBS की कहानी भी अभिजात जोशी साहब ने ही लिखी है.

दोस्तों यारो मैं हूँ पारो एंड विद दैट ये मज़ेदार गाने के साथ मैं एक और गाना जो ओ माई गॉड मैं नहीं कह रही, ये फिल्म का नाम है और इस फिल्म की स्टोरी भी अभिजात जोशी साहब ने लिखी है. सो आई एम गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग फ्रॉम दैट फिल्म एंड विद दैट दीजिए मुझे इजाजत. कल होगी मुलाकात 7 से 9 विद पारो अगैन ऑन 104.9 FM. कीप लिसनिंग टू 104.9 FM एंड आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू देवदास जी. देवदास क्योंकि मैं कहती हूँ मैं पारो हूँ तो हमारे देवदास साहब से बहुत टाइम बात हो रही है तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. क्योंकि देखिए वैसे तो कहते हैं कि एक ही कैरेक्टर है देवदास और एक ही ओरिजिनल कैरेक्टर है पारो, लेकिन बड़ा अच्छा लगा जानकर कि डालस में भी एक देवदास है क्योंकि डालस में है एक पारो. एंड विद दैट आरजे पारो साइनिंग ऑफ.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
6: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से एट 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
7: आज जी रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
8: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
9: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
10: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
15: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
14: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
15: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट। अटेंशन स्टोर ओनर्स, रवि's समर किक ऑफ इज बैक, June 3rd एंड June 4th, 9 AM to 5 PM, एंड दिस ईयर इट्स डिफरेंट। वी आर टर्निंग द वेयरहाउस इनटू अ फुल ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस विद क्रेजी डील्स यू वोंट फाइंड एनीवेयर। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड फ्री गिफ्ट्स ऑल डे। मीट वेंडर्स, डिस्कवर योर नेक्स्ट बेस्ट सेलर्स एंड स्टॉक अप लाइक नेवर बिफोर। सेम रवि's, जस्ट बिगर, बोल्डर एंड वे मोर फन। रवि's इंपोर्ट वेयरहाउस, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: you turned down that job to become a diving instructor?
1: Yeah, I thought Ma would say no.
0: And?
1: She said, build your life the way you dream it.
2: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product, raised you to become. Conditions apply.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPS Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
6: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
5: के टू ड्राइव मतलब
6: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
5: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
6: 100%
7: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0402 Cato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
8: Whether it's a private housewarming, a family wedding reception, or a large convention, Bawarchi Biryani caters everything from live dosas and freshly grilled appetizers to chat stations and more. Bawarchi Biryani knows exactly how to make your event the talk of the town. Make your event memorable. Visit BawarchiCaters.com or call 496-995-9443.
9: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स। दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स। साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट। तो इस बार डिले क्यों, कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com। ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स। प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो।
10: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
11: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
12: हाय, दिस इज कुणाल कपूर एंड यू लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

0: FM turns up the heat in Dallas.
1: दिल हंसते हंसते रो पड़ा।
2: अपनी फैमिली से और झूठ नहीं बोल सकती, I'm sorry।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता
5: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स
4: कितने ऐप्स ट्राई किए यार बट
5: देन डोंट ट्राई अलोन एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट
6: मे 14th टू मे 17th अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org पॉज द नॉइज Meet yourself.

सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अम्ब्रीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज़ ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज

0: सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फनएजिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। कॉल अमरीन एट 214-909-6601
1: और विजिट देयर इंस्टाग्राम अमरीन सैलून लोकेटेड एट एलन एंड फ्रिस्को।
0: अमरीन सैलून, स्टाइल दैट मूव्स विद यू।
2: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
4: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर जागो टाइम्स .com फॉर मोर

0: English and Urdu, led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission, Jago bhi, Jagao bhi. Exclusive media partner, Panasia.
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त. जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो.
3: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फनेशिया.

आपके सुहाने सफर का साथी फनीशिया रेडियो।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682364611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
3: Astrology readings for guidance only and results may vary.
4: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

0: आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।
1: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: अभी बजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है।
0: अरे क्यों?
1: नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए, आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं, आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: You tuned into 104.9 FM Funisha Radio. हम रखते हैं आपको entertained as well as informed 24/7, 365 days a year. This is Funisha.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
5: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग।
1: तन्नी आज तू मुझे देख लेगा ना तो 100 times I love you बोलेगा। By God I'm looking red hot।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो,
3: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: पाजी तुआड़ी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
5: बिल्ली?
6: तू लगता है तू पैग लाए होया।
5: तू इधर कर, तू सो जा, आराम कर।
4: नहीं पाजी, एक ही बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती है। पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
5: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा,
6: मेरी फ्लाइट है, तू सो जा।
4: पर दादी

0: your favorite music on your favorite radio.
1: Yeah!

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता। ही इज रॉन्ग, वॉच मी।

0: Rest a while and run a mile with Funasia Radio.
1: या, 4 साल बाद तुम्हें मेरी याद आई।
2: I need your help. Please, Ronnie.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनिश।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है।

0: खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करूं और दुआ में तेरा नाम आए।
1: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया, फन एशिया।

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
3: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फाइनेंशियल।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे।
1: Turns up the heat in Dallas.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682364641 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
5: आज की रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ऑन रिसर्च में वेरी।
6: हाय, दिस इज रणवीर शोरी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।

और जब तुम उसकी बारात में क्रैश लैंड हुई, टल्ली हो गए। उस दिन कॉलेज वाले प्यार से फॉरएवर वाला प्यार हो गया तुमसे, बाय गॉड।

फाइव एंड हाफ गर्लफ्रेंड्स के बाद ये रियलाइज किया कि ऊपर वाले ने एक ही तुम बनाया। पर तब तक तो मेरी यादों की नहीं, सबके सितारा बन चुकी थी।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
7: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha.
6: रोज का सेम प्रॉब्लम.
8: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
9: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग.
8: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
10: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
11: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
12: Sab kuch saaf rakh sakte ho.
13: Par mujh pe kisi ki nazar nahi jaati. Koi नहीं सोचता मेरे बारे में.
14: क्योंकि ये कौन बोला?
13: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
15: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 972-877-2500.
16: Immigration attorneys in the DFW area. If you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
17: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपने कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
18: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
19: In one moment, an accident can change everything.
2: When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
12: This is Uday Chopra and you are listening to FunAsia Radio.
19: Thank you very much for joining us on this lovely Tuesday morning. Ladies and gentlemen, it's the 12th of May. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banai. Chaand sitare banai, zameen aasmaan banai. Insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai, jisne mujhko, aapko aur ye saari kainat ko, insaniyat ko aage badhane ke liye banaya hai. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम, एंड लेट्स डू दैट विद द म्यूजिक ऑफ मिस्टर ए आर रहमान.

बड़े हो गए।

0: Let's get you some messages from our sponsors and our advertisers now, right here on the Funasia Network.
1: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. And when bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
4: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGPT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
5: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
6: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
5: K2 ड्राइव मतलब
6: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
5: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
6: 100%
7: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0400 K2 Drive, Dallas's smartest fleet partner.
8: Ritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
8: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
10: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के decisions कोर्ट लेता है।
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
10: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
13: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682-346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
14: Astrology readings have guidance on the answers may vary.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
15: क्या मतलब?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
17: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: इससे पहले कि आप इसे एक ऐड समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। याद है आपको जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे? मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी। अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास। बसंत मेला 31 मई, हैगड़ पार्क, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव। फ्री एंट्री फ्री पार्किंग। मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर। स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरीज के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us।
19: Hi, I am Shahrukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं, फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works, engineered for excellence.
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
8: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
9: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
8: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
9: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
0: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
10: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

0: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
0: इमिग्रेशन इज अ सीरियस कंसर्न फॉर अ कम्युनिटी, एंड व्हेन यू आर फाइलिंग योर केस, यू वांट अ फर्म व्हिच इज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू इमिग्रेशन लॉ, लाइक द लॉ ऑफिसेज ऑफ सीमा मेहता। From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
0: 3 minutes, that's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Collin and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
5: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
5: कैसे?
6: पेज 3 ईटरी?
5: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
6: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
5: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
7: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
8: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

0: Perry Como's Killing Me Softly with her song. Jimmy Carter visits Cuba on today's date. In 2002, the first American president to visit since 1959's revolution. And in 2008, a massive earthquake struck Sichuan province in China, destroying some four-fifths of the structures in the affected area and killing some 90,000 people. Happened as recently as the 12th of May in 2008. And those, ladies and gentlemen, were some stories from the annals of history that happened on today's date. Taking us to 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
5: अपनी roots भी और Texas का swag भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में Royal Sona Masuri Rice हो, नानक पनीर हो या Parle Ji biscuits, वही देसी taste जो दिल को घर जैसा feel दे. और साथ ही HEB के exclusive Texan favorites जो सिर्फ यही मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
6: कभी ऐसा लगता है कि डिसीजंस आप ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है. हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना. कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सस. चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस. कॉन्टैक्ट 9453387670. ईमेल astro111city@gmail.com. अनीता चुंद्रू, योर लाइफ विद राइट डायरेक्शन.
7: कॉन्टैक्ट 9453387670. ईमेल astro111city@gmail.com और विजिट टैक्सी एट 5200 मेमोरियल ड्राइव, कॉलोनी, टेक्सिस.
8: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहाँ हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
9: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
10: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
9: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
11: Oh, haseena zulfon wale jaane jahan.
12: सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए. बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट. बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस. मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस. Call Amreen at 214-909-6601.
10: Or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
12: Amreen Salon, style that moves with you.
13: An accident changed my life overnight. The pain made even simple things hard, and taking care of my family felt impossible. I was stressed, scared, and didn't know where to turn. Luckily, I found Omar Khwaja and team. They listened, treated me with respect, and explained everything clearly. They stood by me every step of the way. If you have been injured in an accident, you don't have to face it alone. Call the law offices of Omar Khwaja today. Because of them, my family and I can finally move forward.
10: Call now to 833-GET-OMAR. The law offices of Omar Khwaja. Your rights, their responsibility.
14: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
0: The final hour of our program here. Let's start with this.
15: और आप जानते हैं कि डॉन का मनोरंजन करना हमारा फर्ज है, तो उनके हॉनर की खुशी में एक खास सॉन्ग की पेशकश करूंगा।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है, स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया।
2: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा।
3: कौन सा?
2: कैरेट लेन।
3: वेट, व्हाट? कैरेट लेन इंडिया वाला?
2: हाँ वही।
3: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली।
2: देखा, ढूंढ के दिया ना।
4: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को, लाइट वेट रियल डायमंड्स मेड फॉर एवरीडे। कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट।
5: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
6: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
5: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
7: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
8: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha.
7: रोज का सेम प्रॉब्लम।
9: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
10: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5-13। कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
11: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
12: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करे फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center, build mastery, unlock potential.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
18: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
19: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
4: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
20: Yeah! Abhi baja hai karna bhido.
21: Apun bole to full Bollywood dhamaka. Funnesia pe.
22: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Funnesia Radio.

0: at Keto Drive and let your car earn you money. Visit ketodrive.com or call 214-814-0402. Keto Drive, Dallas's smartest fleet partner.
1: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
2: Excuse me. It's called being loyal.
1: It's called being predictable.
2: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
1: And what's so special at Neon Cactus?
2: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
1: Not bad.
2: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
1: Okay, this I didn't expect from you.
2: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
3: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
4: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी।
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: Yeah! Abhi baja hai ga na bhido.
11: Apun bole to, full Bollywood dhamaka, Funisha pe!
12: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
13: Tax planning tip.
14: Hi everyone, this is Shalini Kotiyal, CPA, and here is your quick tax planning tip. Time your income and deductions. If you expect your income to change next year, consider shifting income or deductions to the year with the higher tax rate to maximize your saving. To learn more about it, you can reach out at 281-760-5573 or visit my website, escotialcpa.com.

0: Alia Bhatt Sirazi taking us to the end of our show for today. Me Too's coming on right after me. You'll continue listening to the Fun Asia Network right at 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
4: सब कुछ साफ रख सकते हो,
5: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
6: क्योंकि ये कौन बोला?
5: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
7: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
8: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodiyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
9: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
0: Immigration attorneys in the DFW area. If you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
11: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works, engineered for excellence.
12: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
9: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
12: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
9: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
13: मे 14th टू मे 17th, अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स। रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org. पॉज द नॉइज, मीट yourself.
14: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: हेलो नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज गपशप गली विथ मी टू। और इस गली में घुसने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि शबनम जी ब्रिंग्स हर अमेजिंग शो एवरी मॉर्निंग वीकडे मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 7 से लेकर 10 तक। और यहाँ से मेरी जर्नी जो शुरुआत की शुरुआत होती है आप लोगों के साथ अंटिल 12:30। आई प्रॉमिस बियॉन्ड दैट ऑल्सो इट इज एवरी थिंग दैट यू आर लुकिंग इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक इन्फॉर्मेशन एंड दैट community connect that you will find right here on Funisha Radio 104.9 FM. So, chalein. It is 12th of May, ladies and gentlemen. Hamare studio mein baje hain 7 minutes past 10. It's 10:07.

दिस सॉन्ग गिव्स यू द फीलिंग कि भाई मौसम सुहाना है, और एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि वेदर अपडेट जो लेकर आने वाली हूँ दैट विल क्लियरली टेल यू व्हाट इट इज इन स्टोर फॉर यू टुडे. इतना कह सकती हूँ कि इट इज गॉर्जियस मे वेदर आउटसाइड. अगर आपने अभी तक कदम नहीं रखा है बाहर तो जरूर जाएं, बिकॉज इन द कमिंग डेज इट्स गोइंग टू गेट वार्मर एंड दिस इज दैट वन डे विच गिव्स यू दैट ब्यूटिफुल गॉर्जियस स्प्रिंग वेदर फील एंड दैट इज वॉट यू नीड टू एन्जॉय टूडे. सो सनशाइन है, लाइट विंड्स और रिलेटिवली लो ह्यूमिडिटी जो आज आपको मिलने वाली है, एंड दैट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन दैट यू गोइंग टू गेट दिस आफ्टरनून. और हाइस हमारे लो 80s तक पहुँचेंगे, और कल से ये जो वार्मिंग ट्रेंड हमें रेस्ट ऑफ द वीक के लिए मिलने वाला है वो कल से शुरू होगा. कल का हाई इट विल अप्रोच द 90s एंड देन इट विल कंटिन्यू टू यू नो राइज और डिप टू द 90 एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट दिस रेस्ट ऑफ द वीक. आवर नेक्स्ट चांस फॉर शावर एंड थंडरस्टॉर्म्स विल अराइव लेट इन द वीकेंड और गोइंग इनटू अर्ली नेक्स्ट वीक. तो फिलहाल 73 डिग्रीज जो एंजॉय करें मजे से करें. आज का हाई हमारा 83 के आसपास, लो विल बी अराउंड 63. टुमारोज हाई इज गोइंग टू बी क्लोज टू 90, विल एट सम प्लेसेस टच 90, गो टू 91 इश एंड ऑल ऑफ दैट. एंड थर्सडे इज व्हेन द टेम्परेचर विल फॉर श्योर बी 90 इन ऑल द places in DFW. And Friday को थोड़ा सा और एक आध डिग्री आप समझ लें बढ़ाई लें for Friday. And then Saturday it is back into the 90s and Sunday as well. और आप लोगों के लिए बारिश के chances जो हैं Sunday को जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी वक्त आने पर. Let the weather take its own course of time to tell us what exactly it is going to be over the weekend. That was the weather update for all of you on Gupshup Gali with me too.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल्ड वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स। दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स। साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट। तो इस बार डिले क्यों? कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com। ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स। प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो।
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
12: Tracks that put you on the right track.

चरखा चलते रहना चाहिए और ये है जिंदगी का जो एक एक फलसफा. यू नो नथिंग शुड स्टॉप यू एंड नथिंग एवर स्टॉप्स यू. कुछ भी हो जाए जिंदगी चलती रहती है, लेकिन ये जिंदगी अच्छी चले और फ्रूटफुल हो इसी का बस एक रास्ता मैं आपको बताना चाहती हूँ. वेदर यू आर एन एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर या ग्रोइंग फैमिली, गेट ट्रस्टेड फाइनेंशियल guidance designed to help you protect income, reduce taxes and grow equity for the future. और ऐसे में आपके जहन में जो नाम आना चाहिए most immediately, it is CPA सुधीर पाए. और ये वो हैं जो आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, रियल एस्टेट हो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो, mytimeequity.com पे जाके यू कैन फाइंड आउट वॉट ऑल आर द प्लेसेस इन योर लाइफ दैट दे कैन हेल्प यू इन दैट फाइनेंशियल गाइडेंस दैट यू आर सीकिंग. तो ज़रूर कॉल करें मिस्टर CPA सुधीर पाय एंड हिज टीम 4697021272. बिल्ड वेल्थ विद कॉन्फिडेंस या विद माई टाइम एक्विटी. वंस अगेन यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. गपशप गली में हमारी बहुत सारी बातें, गपशप. बस आप समझें कि ये जो चल रही है इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, या जिंदगी के बारे में पूछना चाहती हूँ, इमोशंस के बारे में पूछना चाहती हूँ. और हर बार ये कहती हूँ कि इनका कोई सही या गलत जवाब नहीं होता, ये आपका अपना एक्सपीरियंस है जो लेकर आते हो आप ऑन एयर. सो गेट रेडी फॉर फ्यू क्वेश्चंस, लाइफ क्वेश्चंस, लेडीज एंड जेंटलमैन. थोड़ी देर में आपके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे. आफ्टर ऑल यहाँ गपशप जो है वो दिल से होनी चाहिए. बस यही इल्तिजा है आप लोगों से 972-235-5555 एंड दैट्स द अदर रिक्वेस्ट आई हैव. ये नंबर हमेशा हैंडी रखें इफ़ यू वांट टू सेंड इन योर रिक्वेस्ट, योर डेडिकेशंस, या सिंपली हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑन एयर आके. ये नंबर तो भाई ज़रूरत होगी.

आर लिसनिंग टू फर्नीचर रेडियो 104.9 FM. गपशप गली में आप लोगों से कुछ बातचीत करनी है एंड इट इज अबाउट दैट इमोशनल कनेक्ट दैट आई वांट टू मेक विद ऑल ऑफ यू. और इसीलिए कुछ इस दौरान हम ऐसे सवाल पूछेंगे विच इज टू डू विथ यू, योर लाइफ, योर फैमिली, योर पार्टनर, यू नो, एनीथिंग टू डू विथ यू नो योर बींग इट्सेल्फ. क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों का एक हिस्सा होते हैं और इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ इस हिस्से के लिए आप लोगों का क्या मतलब एक इक्वेशन रहता है. और इसी के चलते ना आज जो टॉपिक निकालना चाहती हूँ इट इज़ अबाउट दैट रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर दैट आई वांट टू रियली ट्राई एंड एक्सप्लोर. क्योंकि इसके कई रंग होते हैं, चाहे आपके पार्टनर, इफ़ यू आर डेटिंग यू हैव अ पार्टनर और इफ़ यू आर इन अ गुड मैरिज, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट इज राइट एंड गुड. क्योंकि अगर दूसरी दिशा में गई तो उसका कोई फिर अंत नहीं है और फिर वो सही और गलत में बहुत सारी बातें निकलेंगी जो मुझे पता है कि ऑन एयर आई एम श्योर मैनी पीपल माइट हैव प्रॉब्लम्स टॉकिंग विथ. सो लेट्स टॉक अबाउट गुड मैरिज, गुड पार्टनरशिप दैट पीपल हैव, राइट. तो पहला साल जो होता है पर्टिकुलरली बड़ा स्वीट, बड़ा रोमांटिक होता है. शुरुआत में यू आर ट्राइंग टू यू नो डू एवरीथिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे को आप इंप्रेस करना चाहते हो. इतना ज़्यादा एक वो नेचुरल एक वो जो इंक्लिनेशन होता है अगले को समझना, करना एंड ऑल ऑफ दैट, इट कम्स वेरी नेचुरली. एवरीथिंग वेरी ऑर्गेनिक होता है, राइट. जब आप एक वो एक दूसरे की समझ डेवलप करना चाहते हो एंड देन यू ग्रेजुअली डेवलप दैट वेरी सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ योर ओन, है ना. आप किसी क्राउडेड पार्टी में जाते हो और वहाँ पर आप दूर खड़े अपने पार्टनर के साथ कुछ लुक एक्सचेंज करते हो और आपको क्लियरली दिख जाता है उनकी आंखों में या एक आईब्रो के रेज में कि भाई बंदा बोर हो रहा है या बंदी बोर हो रही है, एंड दैट्स वेन यू डिसाइड कि चलो घर चलते हैं या कुछ और करते हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बिना कहे वो बातों को समझ जाना, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग. और ये धीरे धीरे होता है एंड दैट इन माई ओपिनियन इज रियल इंटिमेसी. बिना कहे बातों को समझ जाना, इट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल यार. और जो ना समझ आए ना, तो तरीके कई सारे हैं जिनमें से एक तरीका है ऑफकोर्स लड़ाई का, आर्ग्यूमेंट का, राइट. दैट्स ऑल्सो ए नेचुरल थिंग, राइट. सब कुछ तो फ्लावरी नहीं होता है, तो कभी कभी बहस भी हो जाती है. जब अगले बंदे को समझ नहीं आ रहा होता है तो समझा दें यार, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, राइट. मतलब कि चीज़ें ना मतलब डेस्टिनी पे नहीं छोड़ दें कि भाई समझ जाएगा बंदा या बंदी. बता दें, कॉन्वर्सेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है. लेकिन ये चैप्टर किसी और दिन लेंगे. फिलहाल जो चैप्टर पकड़ना चाहती हूँ इट इज़ टू डू विथ यू नो दोज लिटिल हैबिट्स दैट वन डिवेलप्स फॉर देयर पार्टनर. वो छोटी छोटी आदतें जो कि आप अपने पार्टनर की समझते हो या पार्टनर आपकी समझते हैं और वो आप करने लगते हो विदाउट देम आस्किंग फॉर इट. और ये छोटी छोटी आदतें मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ. क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारी लाइफ के साथ हम इतने आगे बढ़ जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, इन छोटी छोटी आदतों को कहीं एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं. आई टेल यू माई, ठीक है. माई पार्टनर ऑलवेज, बिकॉज मेरे को गर्म पानी पीना मेरी आदत है, तो रात को मुझे एक

0: हमारी लाइफ के साथ हम इतने आगे बढ़ जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, इन छोटी छोटी आदतों को कहीं एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं। आई टेल यू माई, ठीक है, माई पार्टनर ऑलवेज, बिकॉज मेरे को गर्म पानी पीना मेरी आदत है, तो रात को मुझे एक गर्म पानी का बॉटल मिल जाता है, ल्यूक वार्म वाटर का बॉटल एक मिल जाता है, तो दैट इज़ समथिंग आई नाउ टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन जब मैंने इस चैप्टर को खोला आप लोगों के साथ बात करने के लिए, तो मैं भी यही सोचने लगी कि देखूँ ज़रा कि मेरे पार्टनर मेरे लिए क्या क्या करते हैं। तो इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें याद आ रही हैं कि सोचा कि आप लोगों का भी कुछ चैप्टर्स खोलते हैं और इन छोटी छोटी आदतें जो आप अपने पार्टनर के लिए करते हो या आप पार्टनर आपके लिए करते हैं बिना उनके पूछे, वो क्या चीजें हैं। 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हाय
0: हाय, हु इज दिस?
1: दिस इज जया।
0: जया, बताइए वो छोटी छोटी आदतों में से आपकी आदत या आपके पार्टनर की आदत क्या है?
1: Actually, you know, I want to say that my Indian home, my husband is from South Sudan. So he never abuse any bad words or no hit things, never hit me, never use bad words. Very loving, kinding person, you know, very thankful. So, I used to every morning before he goes to work or after he comes, I used to hug, you know, that he used to like it. He said, I will remember it forever. He used to always say that.
0: How sweet. A small hug actually, which becomes pretty much the practice of every day. Lekin wo choti si cheez kitna achha lagta hai agle ko agar, to kyun na kiya jaye? Why not? Hai na? That is such a sweet thing you share. Thank you so much, Jaya.
1: You're welcome. Thanks for asking.
0: Absolutely, my pleasure. I want to continue this segment beyond the break and let's get you going on this one. Ki choti choti aadatein aap apne partner ki recognize karo jo aajkal aap taken for granted lete ho, kyunki ho sakta hai ki ek saal se upar ho gayi hai aapki shaadi ko ya aapki dating phase jo hai wo bhi kafi lamba chal gaya. To you know, sort of acknowledge these things, let's acknowledge it yaar, ki agar aapke partner aapke liye special kuch karte hai na, पता तो चले क्या करते हैं, क्या पता लोगों को भी कुछ आइडियाज मिल जाएं। इट इज सो गुड टू हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, यू नो, सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इवोक हियर, दैट ब्यूटी, दैट सेंसिटिविटी, दैट सेंसिबिलिटी इन रिलेशनशिप्स। तो चलिए गुफ्तगू करते हैं बियॉन्ड द ब्रेक। दिस इज गपशप गली विथ मी टू एंड देर इज ए गिव अवे कमिंग अप फॉर यू फॉर दिस। कंटिन्यू लिसनिंग टू मी। चले छोटे से एक ब्रेक पर राइट नाउ।
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: बावर्ची बिरयानीज इन प्लेनो, बिगर, बेटर एंड द बेस्ट नाउ सर्विंग एवरीडे लंच स्पेशल्स, थालीज, बिरयानी कॉम्बोज एंड रिफ्रेशिंग ईरानी चाय विद डिलीशियस इंडियन स्नैक्स, फ्रेशली मेड स्वीट्स एंड बेकरी आइटम्स। प्लीज वॉक इन टू बावर्ची प्लेनो और विजिट bawarchiplano.com।
7: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां,
8: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कम्प्लीट हेयर मेकओवर, Ambreen Salon gives you that perfect hairstyle, jo aapki personality ko kare highlight. Because great hair doesn't just change your look, it changes your confidence. Mention Funasia and get 10% off on your hairstyle service. Call Ambreen at 214-909-6601.
9: Or visit their Instagram, Ambreen Salon, located at Allen and Frisco.
8: Ambreen Salon, style that moves with you.
10: Chicken, banana.
11: चिकन बनाना
12: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
13: दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एट सैल्स नैशविल हॉट चिकन। दे डोंट जस्ट मेक इट, दे मेक इट अनफॉरगेटेबल। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, बोल्ड फ्लेवर्स, जंबो चिकन टेंडर्स, नैशविल सैंडविचेस दैट एक्चुअली हिट। लोकेटेड इन प्लेनो एंड रिचर्डसन, सैल्स नैशविल हॉट चिकन, वी फिक्स हंग्री।
14: माय टाइम इक्वेरी।

जी हाँ, मैरिड कपल हो या आप अगर डेट कर रहे हो, अगर यारी तक पहुंच जाए ना रिलेशनशिप कोई भी, तो फिर होती है एक्चुअली वो बात, जो वो मैजिक जो आप मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन वो यारी अगर रहे ना तो क्या ही बात है. जैसे हमारे इन लिसनर ने जो कहा अबाउट ही हिज सेंस ऑफ स्मेल दैट ही हैज़ लॉस्ट, और उनकी वाइफ कैसे वो खाने की खुशबू भी डिस्क्राइब करती हैं, जाने से पहले वो गैस टर्न ऑफ है कि नहीं वो चेक करके जाती हैं. ऑल ऑफ दैट, दीज आर लिटिल हैबिट्स दैट यू डेवलप अराउंड योर वेरी स्पेशल समवन, राइट? कि वो आप ख्याल रखना चाहते हो बिना उनके पूछे बताएं, यू नो, आप वो करना चाहते हो. एंड दैट इज़ वॉट दिस इमोशनल कनेक्शन आवर इज़ गोइंग टू डू फॉर अस. हम हर ट्यूसडे को ऐसी कोई बात निकालेंगे जो आपसे और मुझसे रिलेटेबल हो, और हम बात करेंगे, कुछ आपसे जानेंगे, कुछ अपनी बताएंगे. एंड दिस इज़ गपशप गली. हमारी गपशप बियॉन्ड द ब्रेक ऑल्सो विल कंटिन्यू. राइट नाउ दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर ऑन फनीशर रेडियो 104.9 FM.

0: और ये बरसता ही रहे टू एवरीबडी हु एंजॉय देयर रिलेशनशिप विद देयर पार्टनर. और वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बिना कहे बिना बोले जो मिल जाना वो कितनी खास बात होती है. एक और लिसनर से सुन लेते हैं. यू आर लाइव ऑन एयर, आप अपना नाम बताइए और एक मिनट है तो जल्दी से अपनी कहानी बताइए.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरा नाम श्वेता है. तो ये मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे इन लॉज की कहानी है.
0: ओके.
1: तो मेरे इन लॉज, आई मीन आई एम 40, सो माय इन लॉज अराउंड 70 नाउ, बट दे हैड अ लव मैरिज. सो माय मदर-इन-लॉ, शी इज फ्रॉम अ लाइक वेरी टिपिकल इंडियन वेजिटेरियन फैमिली, जहाँ पे गार्लिक और अनियन कुछ नहीं खाते. बट माय फादर-इन-लॉ ऑन द अदर साइड, ही इज अ टिपिकल बंगाली, जो फिश के बगैर तो भी नहीं स्टार्ट नहीं होगा. सो व्हेन दे गॉट मैरिड, तो यूजुअली होता है ना कि लड़का छोड़ देता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए भी मैं वेज बन जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट. बट यहाँ पे उल्टा हुआ. माय मदर-इन-लॉ स्टार्टेड, शी लर्न, शी स्टार्टेड, शी डिड ईट, बट शी स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू कुक, एंड नाउ शी कैन कुक एनीथिंग,
0: यू नो.
1: एंड स्पेशली with the smell and everything, it is very very
0: very, very difficult for a vegetarian, especially to cook fish, because it has a very stringent smell.
1: Jinko pasand
0: nahi hai, a very strong smell. I mean, it is aroma for me, but yes I can so understand, you know. Ye cheez meri ek aur friend hai jo karti hai, and I find it so very endearing. Thank you for sharing your story, Shweta. Means a lot to us. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Ladies and gentlemen, for contributing in this emotional connection.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
5: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
4: कैसे?
5: पेज 3 ईटरी?
4: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
5: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
4: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
2: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
6: कभी ऐसा लगता है कि डिसीजंस आप ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है. हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना. कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सास. चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस. कॉन्टैक्ट 9453387670. ईमेल astro111city@gmail.com. Anita Chundru. your life with right direction.
12: Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi@5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
13: अभी बजा आएगा ना भिड़ो
14: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे.
15: Hi, this is Sefali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

Want to take a moment to talk about Ravi Imports Warehouse on Gapshup Gali with me too, ladies and gentlemen. Thank you very much for tuning in. And this is a such place which is your trusted wholesale and retail partner, and that is Ravi Imports Warehouse. And आप जो सारे store owners हैं, वो ध्यान से सुने. Ravi summer kickoff is back, और आप अपने calendars mark कर लें for June 3rd and June 4th, 9 a.m. से 5 p.m. तक ये मौका आपको मिलेगा. It's bigger, the entire warehouse turns into a tropical experience for all of you, जहां आपको मिलेगी crazy deals, new product launches और free gifts. पूरे दिन आपको वो जो टाइमिंग है फ्रॉम 9 a.m. टू 5 p.m. दैट्स व्हेन यू कैन अवेल इट. जून 3rd एंड 4th, लेडीज एंड जेंटलमैन, गो फॉर दोज क्रेजी डील्स दैट दे हैव. यू कैन मीट द वेंडर्स, डिस्कवर बेस्ट सेलर्स एंड स्टॉक अप लाइक नेवर बिफोर. सो ऑल स्टोर ओनर्स, आपने होपफुली ये दो डेट्स जो हैं अपनी खाली कर ली हैं. क्या पता जून 3rd को पूरा काम ना हो, तो जून 4th को भी जरूर जाएं. इट्स अ मैसिव वेयर हाउस सेल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. जरूर याद रखें, इट इज एट 11:29, लेट्स पुट इट लाइक दिस, 11029 हैरी हाइंस बुलेवार्ड, बिल्डिंग ए in Dallas. It's Ravi's Import Warehouse. You are tuned into Gapshup Gali with me too. और कुछ parental guidance की बात करने वाली हूँ यहाँ पर. एक जो burning topic है, and it is to do with that Stonebriar Mall rule that has come up.

Once again, ladies and gentlemen, अंग्रेजी हो या हिंदी, जिस भी भाषा में आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं जरूर करें, क्योंकि हम आपके ओपिनियंस जानना चाहते हैं. क्योंकि आपको पता है ना कि स्टोन ब्रायर जो फ्रिस्को में है उस पर एक नया रूल जो शुरू हुआ है फॉर ऑल द विजिटर्स अंडर 18. अब इसके बारे में मुझे आपसे कुछ गुफ्तगु करनी है. ऑल द लाइन्स आर ओपन लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई डू वॉन्ट टू फाइंड आउट फ्रॉम ऑल ऑफ यू वॉट योर ओपिनियन अबाउट इट इज. और इसीलिए मैं ना आप लोगों के लिए गिव अवे भी देने वाली हूँ. यहाँ पर मैं फन पिज्जा किचन का जो $10 का गिव अवे है फ्रॉ द फ्रिस्को लोकेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू ओपन अप फॉर यू इन ऑर्डर टू यू नो get you a nice desi pizza there. और साथ ही साथ वो होता ना कि गाना खाना बातें सब साथ चलती रहनी चाहिए, तो खाने का मैंने प्रबंध किसी एक का मैं करने वाली हूँ. लेकिन अबाउट द बातें, स्टोन ब्रायर सेंटर फ्रिस्को जो एक पेरेंटल गाइडेंस जो अब एक पॉलिसी जो उन्होंने शुरू किया है फॉर विजिटर्स अंडर द एज ऑफ 18, इसके रूल्स के बारे में आप जानते हो कि अगर आप नहीं जानते तो मैं ये बता देती हूँ कि दिस इज वेरी स्पेशली फॉर विजिटर्स अंडर द एज ऑफ 18, और उनको अपन अकंपनी पेरेंट्स का होना चाहिए या तो फिर सुपरवाइजिंग एक एडल्ट साथ में होने चाहिए जो एटलीस्ट 21 साल के हों. और इसका जो एप्लीकेशन है इट इज़ फॉर ए टाइम विंडो दैट दे हैव सेट. इट इज़ इन इफेक्ट ऑन फ्राइडेज एंड सैटरडेज आफ्टर 3 PM, जब तक मॉल क्लोज नहीं होता. और आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी कुछ लेकर चलना पड़ेगा. मॉल सिक्योरिटी अगर आपसे प्रूफ पूछे आपकी एज के बारे में तो सुपरवाइजिंग एडल्ट, क्योंकि 21 वो प्रूफ करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए एक प्रूफ होना चाहिए. इफ़ यू हैव समबडी, इफ़ योर चाइल्ड और एनीबडी विजिटिंग अंडर द एज ऑफ 18, अगर उनके पास वो प्रूफ नहीं है, वो आईडी नहीं है, तो फिर एनी फॉर्म ऑफ आईडी, इट कैन बी स्टेट इशू ड्राइवर्स लाइसेंस आईडी कार्ड, मिलिट्री आईडी, स्कूल आईडी, पासपोर्ट, एनीथिंग, यू हैव टू कैरी वन ऑफ दोज टू प्रूव दैट यू आर 21 और अबव इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज अ कंपेनियन विथ एनी 18 ईयर ओल्ड दैट यू आर गोइंग विथ और अ ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स और अंडर दैट यू आर गोइंग विथ. तो ये सारी चीज़ें जो नई ताज़ी लगाई गई हैं आई थिंक लास्ट सैटरडे और द सैटरडे बिफोर दैट, आई थिंक तब से जो ये अप्लाई होने लगा है स्टोन ब्रायर मॉल पे. और ये जो सुपरविजन लिमिट्स हैं ये 21 या ओल्डर के लिए एक एस्कॉर्ट के तौर पर लेके जाना ज़रूरी है, यूजली अप टू 3 or 4 पीपल. ये भी मैं देख रही हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं. द सुपरवाइजिंग एडल्ट must remain with the youths at all time while in the mall. और ये enforcement जो है during the hours that I have told you, और teens और youths जो है unaccompanied नहीं घूम सकते in the mall during the time frame I told you. और people who cannot provide proof of age will be asked to leave the property. That's how strict the rules are for now. इसके बारे में बात करेंगे लेकिन एक गाना सुनते हैं और फिर वहाँ वापस आते हैं. This is Gapshap Gali with me too. Parents ke vichar janna chahti ho. So get ready with what do you think about this entire system. 972-235-5555 number in the studio.

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
1: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
2: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
1: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
3: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
4: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
5: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
6: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
5: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
7: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh. उमर ख्वाजा.
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: इससे पहले कि आप इसे एक ऐड समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं. याद है आपको जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे? मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी. अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास. बसंत मेला 31 मई, हैगड़ पार्क, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक. अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव. फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग. मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर. स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरीज के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us.
11: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो.

0: बियॉन्ड म्यूजिक एंड बियॉन्ड योर डेली रूटीन, अगर आप कुछ दिल को सुकून पहुंचाने वाला, यू नो समथिंग दैट विल मेक यू स्ट्रेस फ्री, अगर ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो एक जवाब आपके लिए है ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट, जो कि 14th मई से लेकर मई 17th तक, तो इसी हफ्ते है. मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द डेट. इट स्टार्ट्स ऑन थर्सडे ऑल द वे टिल संडे. दिस 3-day इमर्सिव जर्नी दैट यू कैन हैव, जहाँ पे आप अपना बिल्कुल ना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो, अपने जो इमोशनल या मेंटल ब्लॉक्स हैं उन्हें आप थोड़ा सा क्लियर कर सकते हो, आप अपने आप के साथ दोबारा से जुड़ सकते हो. और ये है पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक के जरिए, जो कि एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स आपको आपके लिए लेकर आएंगे एट द ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट. और कभी कभी ना ये एक वॉलंट्री छोटा सा ब्रेक खुद के लिए लेना ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू फाइंड दैट क्लैरिटी इन लाइफ, क्लैरिटी इन योर डे, क्लैरिटी इन योर वर्क. इट रियली हेल्प्स. अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो, कभी नहीं पहले किया, तो आप ज़रूर करें, रजिस्टर करें जाकर oshouniversal.org. सी एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ इट, यू नो देर इज़ नथिंग टू लूज. What you will gain is that peace and calm in your mind out of these 3-day immersive experience that you're going to have at Osho Universal Retreat through meditation. So once again, register kariyega zarur oshouniversal.org. And that stress-free environment is what the system is trying to create for everybody visiting malls. क्योंकि क्या है ना कि 2026 में suddenly US shopping malls में एक spike नज़र आ रहा है, teen takeovers, the violent disturbances, और इसी के चलते जो हमने Stonebriar Mall जो कि Frisco में है हमारे Dallas में, वहाँ पर हमने देखा है ये जो strict एक curfew लगाया गया, and then that rule that has been emerged, you know, which emerged out of all of this, it was 18 and under जो है वो adults के साथ ही जा सकते हैं, कि स्कॉट चाहिए उनको, उसके बिना वो नहीं जा सकते. 21 और अबव somebody should be accompanying these teenagers. And in कुछ major incidents all over the US जो देखने को मिला है, वो चाहे Bronx, Long Island, even North Texas, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, और इसके कारण कई दफ़े ऐसा हुआ है कि retail shutdowns हुई हैं, और फाइट्स के कारण, वैंडलिज्म के कारण, और पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा है. तो एक ये बहुत स्ट्रांग स्टेप लिया है Stonebriar Mall ने. मुझे एक लिसनर का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि ये बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, ये जो किया है इट इज़ गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर मेनी अदर प्लेसेस. मे बी दे विल फॉलो द सूट, और मे बी द टीन एजर्स विल नो वॉट टू डू एट द मॉल्स बेटर. दे विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिहेविंग like a good citizen. तो ये कुछ बात जो हमारी चर्चा चल रही थी. If you want to contribute in this one, the lines are open. And Divya, you called me in the last segment. Thank you for your contribution. I'd really like you for you to give me a call back. It is the Fun Pizza Kitchen $10 gift card that I'd love to give it to you and somebody else also in this segment. Once again, ladies and gentlemen, do connect with me if you have an input here. 972-235-5555. और ये जो हमारी बातें हैं ये कंटिन्यूड रहेंगी इस सेगमेंट में भी. कुछ अगर आप हमें बताना चाहते हो इस बारे में एज अ पेरेंट और एज अ टीनेजर, प्लीज जॉइन मी ऑन एयर. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हेलो.

0: Hi.
1: Hi, Mitra ji, how are you?
0: I am doing very well. I know you wanted to add something to the story. So please tell us what is your input and what do you think about it in as briefly as you can.
1: जी, उसमें
0: जी.
1: क्या है कि ये जो इन्होंने कदम उठाया है, ये बच्चों की भलाई के लिए उठाया,
0: जी जी.
1: उसमें तो कोई दो राय नहीं है।
0: करेक्ट.
1: उसका कारण ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। मैं वॉलमार्ट में था तो 5 पुलिस गाड़ी पुलिस की आके उधर खड़ी हुई। मैंने कहा पता नहीं कितनी बड़ी डाका पड़ गया इधर।
0: हाँ.
1: तो पता चला कि वो बच्चों को उन्होंने 5 बच्चों को निकाल के खड़ा कर दिया उधर।
0: ओह, आई सी. एंड व्हाट वर क्या कर रहे थे ये
1: अच्छा,
0: बच्चे?
1: हुड़दंग मचा रहे थे और चोरी कर रहे थे वहां से। वो कैसेट उठा रहा था,
0: हाँ,
1: कुछ कर रहा, जेबों में डाल रहे थे।
0: आई सी, आई सी.
1: अच्छा, तो वो इसमें ये है कि ये जब कोई गार्डियन इनके साथ चलेगा जो 21 साल से बड़ा होगा, वो एक तो पुलिस नहीं आएगी, और वो पुलिस आएगी तो केस बनेगा। केस बनेगा तो वो केस सारी जिंदगी उनके गले में एक फंदा बन के घूमता रहेगा। बचपन की एक छोटी सी शरारत और सारी जिंदगी की मुसीबत।
0: करेक्ट करेक्ट.
1: उससे बचाने के लिए ये इन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है।
0: हाँ.
1: और ये माँ बाप जो आजकल के है ना, ये बच्चों को खुला छोड़ देते हैं, कुछ भी करो, एक उनको एक रिस्पॉन्सिबल नहीं बताते। इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा मैं कसूर बहुत समझता हूँ कि वो जो है उनको कुछ भी करने दो, अपने आप सीख जाएंगे। अपने आप किसी ने नहीं कुछ भी सीखा आज तक, जब तक कोई गाइड नहीं हुआ किसी की लाइफ में।
0: पता है
1: और
0: सर, मैं आपको
1: उनको
0: एक और बात यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहती हूँ. मे बी फ्यू ऑफ द पेरेंट्स आउट देयर माइट नॉट इवन नो कि उनके बच्चे एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं. उनके बच्चे
1: क्या
0: उनके
1: कर क्या
0: सामने.
1: रहे हैं। एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली,
0: हाँ.
1: यू आर राइट अबाउट दैट।
0: एंड कई बार
1: एब्सोल्यूटली
0: क्या
1: यू आर
0: होता
1: राइट
0: है ना कि
1: अबाउट दैट।
0: बच्चे माँ बाप के सामने तो शरीफ हैं, लेकिन बाहर जाके क्या करें कई बार पता भी नहीं चलता कई पेरेंट्स को. सो वो भी एक
1: हाँ,
0: हाँ वो भी
1: वो
0: एक
1: घर में बैठे वो अपने अंदर सप्रेस करके रखते हैं। बाहर जाते जैसे ही जाते हैं, वो जैसे स्पंज के ऊपर पानी गिर जाता है तो वो सारा खुल जाता है। तो वैसे ये सारे अपनी जो शरारतें करते हैं, शरारतें करो, हमने भी की हैं शरारतें। शरारत बचपन में अगर शरारत नहीं करोगे तो कब करोगे।
0: लेकिन
1: पर हमारे
0: हाँ.
1: घर में हमको ये पता होता था कि शिकायत घर में नहीं जानी चाहिए, बस इतना ही शरारत करो।
0: हाँ,
1: तो
0: मतलब
1: पुलिस का तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो
0: जी,
1: इसलिए ये
0: बिल्कुल
1: जो
0: बिल्कुल.
1: इन्होंने बहुत समझदारी से इन्होंने ये जो ये स्टेप उठाया है, ताकि पुलिस, एक तो पुलिस 5 पुलिस वाले अगर एक ही केस को वॉलमार्ट में घुस गए,
0: हाँ, तो इट्स
1: बाकी
0: सच
1: के
0: अ
1: समय जो
0: मिसयूज.
1: बाकी की
0: हाँ
1: जो इमरजेंसी है
0: जी, हाँ
1: उसका
0: बिल्कुल
1: क्या होगा। तो
0: बिल्कुल.
1: वो ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके बड़े भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि 21 साल से बड़ा जो
0: हाँ.
1: है
0: और
1: उनके साथ
0: एक्चुअली,
1: चले।
0: हाँ, और एक्चुअली मैं यहाँ पे कहूँगी फ्रेंड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ें ना छुपाएं नहीं. कई बार होता है ना कि हम अपने फ्रेंड्स के बच्चों को कुछ करते देख रहे हैं, या जो बच्चे हैं उनके फ्रेंड्स उन्हें कुछ करते देख रहे हैं, लेकिन बता नहीं पाते हैं ये सोच के कि पता नहीं सामने वाले बोलेंगे तो कैसे लगेगा उनके पेरेंट्स को सुन के कि भाई बच्चा जो है बाहर ऐसे बिहेव कर रहा था. इट्स नॉट माई प्लेस टू इंटरफेयर. लेकिन करें, बिकॉज इट इज़ वॉट यू वुड लाइक.
1: नहीं, इंटरफेयर जरूर, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली उनको
0: या
1: समझा दें कि जी आपके बच्चे ने ऐसा कुछ किया है,
0: किया
1: आप
0: है,
1: जरा देख
0: जस्ट
1: लें, उस
0: लुक
1: पर
0: इन
1: जरा
0: टू
1: ध्यान
0: इट.
1: करें।
0: या एब्सोल्यूट. या
1: माँ बाप अब भगवान तो है नहीं कि वो हर जगह उनके साथ रहेंगे,
0: करेक्ट.
1: तो माँ बाप भी हर जगह साथ नहीं है। पर घर में अगर जो तालीम दी हुई है वो हमेशा उनके साथ रहेगी। अगर वो तालीम नहीं मिली तो फिर बच्चा कुछ भी करे, तालीम
0: जी.
1: साथ में रहेगी, माँ बाप साथ में नहीं रहेंगे। उनको तालीम दीजिए और उनको सिखाएं कि ये गलत है, ये उनके वो बच्चे बोलते, माँ बाप बोलते ये अपने आप सीख जाएंगे। सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, पर उसको उसको डिस्क्रिमिनेट करना सिखाएं कि ये अच्छा ये बुरा है।
0: या कई बार, हाँ, वो भी काम करता है. एंड कई बार जब ऐसा ऐसे किसी प्रॉब्लम में बच्चा पड़ जाए, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ द बिगनिंग ऑफ लर्निंग ऑल्सो, राइट? कि अगर मान ले आपके बच्चे ने बाहर जाके ऐसे बिहेव किया है, तो घर आके वापस हमारे देसी पेरेंट्स का क्या होता है ना कि हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते कि यार तुमने ऐसे कुछ किया मॉल में, या तुमने ऐसे मिसबिहेव किया बाहर, तुम मतलब यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड. ये पनिशमेंट वाला चीज़ ना जो हमारे कई बार देसी पेरेंट्स के साथ होता है, डजंट वर्क. आज का वक्त बदल चुका है, तो उसके साथ तरीके भी
1: हाँ,
0: बदल.
1: पनिशमेंट, देखिए गलतियां तो हमने भी की हैं,
0: जी
1: अब उन गलतियों से हमने सीख लिया है,
0: हाँ
1: फिर वो
0: हाँ
1: दोबारा गलती नहीं करें।
0: हाँ बट दिस जेनरेशन इज ऑल्सो डिफरेंट, राइट? और हर बच्चा अलग होता है. जेनरेशन की बात भी अगर हम छोड़ दें, हर
1: जनरेशन
0: बच्चा.
1: की बात नहीं, बच्चे हमेशा ही अलग होते हैं। हमने गलतियां
0: हाँ
1: की हैं, गलतियों से
0: हाँ
1: सीखा है,
0: हाँ हाँ
1: और वो हमने, मेरा ये है कि एक बारी गलती कर दी तो वो दोबारा गलती नहीं होनी जिंदगी में,
0: नहीं
1: करनी
0: होनी
1: नहीं।
0: चाहिए. नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. यहाँ पे कुछ और कॉल्स लेना चाह रही हूँ मैं, लेकिन लेट्स डू इट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. हाउ अबाउट दैट? दिस इज गपशप गली विथ मी टू समथिंग वेरी अर्नेस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट. इट इज द बिग क्वेश्चन दैट इज दैट्स व्हाट वी आर सीइंग दीज डेज. The teen-led disturbance at malls that we are seeing, which has led to more stricter rules for the youth and teens under 18. इसमें कुछ contribute करना तो इस गाने के बाद करिएगा जरूर. 972-235-5555 number in the studio.

0: कितनी सारी अलग अलग बातें पेरेंटिंग के ऊपर मुझे लोगों से पता चल रही हैं. अभी मैं बात कर रही थी खान साहब से, वो अपना एक पर्सपेक्टिव बता रहे थे जो और जो उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन अपने बच्चों के साथ करते रहने की, उन्होंने कहा कि वो ये मान नहीं सकते कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं जानते या समझते. समझने की बात एक अलग हो जाती है, लेकिन जानते उनके बिहेवियोरियल चीज़ों को समझना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और पेरेंट्स समझने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू कॉन्वर्सेशन, कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशंस विथ देम. पता है, ये बात बिल्कुल सही कही खान साहब आपने. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है टू कीप दैट कॉन्वर्सेशन चैनल ओपन विथ योर चिल्ड्रन. और हमारी देसी कम्युनिटी में क्या हो जाता है ना, कुछ कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी टैबू सब्जेक्ट होती हैं और हम वो बात नहीं कर पा रहे होते अपने बच्चों के साथ. लेकिन गॉन आर द डेज, यू हैव टू रियली इवॉल्व विद द टाइम्स, क्योंकि टाइम इतना अलग है कि उनके बैक एंड कॉल पे एक फिंगर टिप पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि गलत इन्फॉर्मेशन उन तक जाए उससे अच्छा है कि आप उनके साथ बातचीत करके वो चैनल ओपन रखो जहाँ पे आप ही समझने को चीज़ें तैयार हों. चीज़ें बहुत अलग हो रही हैं, वो चीज़ें कुछ हमें भी शायद समझने की ज़रूरत है. लेकिन एट द सेम टाइम Adolescence is one series that I want every parent to watch. ये जानना जरूरी है कि उस communication के बावजूद भी there is that very strong social media presence in the life of our kids की जिस उस दुनिया के बारे में हमें नहीं पता होता है कई बार. What is developing inside your child? You are live on air. बताइए.
1: Hello.
0: Hi.
1: Hi. My name is Yasmin.
0: Yasmin.
1: I just want to add. I just want to add one thing also. That पहला यहाँ शुरू कहाँ से होता है, ये पहला स्लीप ओवर सब होता था. और फिर स्लीप ओवर करते थे, फिर वहां से वो लोग मॉल छोड़ देते थे पेरेंट्स लोग. तो वो लोग को ये मान नहीं होता था, ये चीजें स्टार्ट होना चाहिए था वहां से कि नो स्लीप ओवर अंडर यू नो एज जितनी नहीं होती. छोटे बच्चे लोग को भेज देते फिर मॉल में छोड़ देते हैं. तो मैं ऐसा समझती हूँ कि वहां से वो चीज स्टार्ट होना चाहिए. और ये जो भी होता है बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव बात ये है कि अगर एडल्ट्स के साथ जाएंगे या पेरेंट्स अटेंडेंट्स के साथ जाएंगे तो बॉन्डिंग भी रहेगी, टाइम स्पेंड करेंगे तो मोर नौ बच्चों के साथ अटैचमेंट बढ़ेगी.
0: बिल्कुल.
1: और
0: बिल्कुल.
1: ये सब चीजें बहुत सारी होगी. तो मेरे ख्याल से अच्छा स्टेप है उठाना.
0: बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली कि वो पेरेंटल गाइडेंस इज गोइंग टू हेल्प द चिल्ड्रन फॉर्म अ हैबिट ऑफ बिहेविंग इफ दे आर नॉट एबल टू कंटेन देयर बिहेवियर. और वो एक जनरल अर्ज जो ना वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को फॉलो करना, वो प्रैंक्स, वो सारा उनके लिए मस्ती है. दैट मस्ती नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड नीड्स टू बी डन अंडर ए वेरी क्या कहना चाहिए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है. आप मॉल में जाके ऐसी चीज हरकतें नहीं कर सकते हो. यू आर लाइव ऑन एयर.
2: हाय.
0: हाय
2: रूबी.
0: रूबी
2: रूही
0: रूही रूही टेल मी.
2: या सो आई हैव टू टॉडलर्स. सो इट्स लाइक ऑलवेज बी देयर विद देम, आई अंडरस्टूड. बट ग्रोइंग एज सून एज दे ग्रो टू टीनेजर, व्हाट आई फील इज दे डोंट वांट देयर पेरेंट, दे वांट देयर freedom. But if from starting onwards we teach them that we are the safe place, your parents are always your safe place, so I think they never say you to not come with you or something like that. I have one 10-year-old. He always wants to go with me only, just because he know that at the end of the day I can, the person who saves you from everywhere, anywhere.
0: Right, right. But you know, Ruhi, with growing, as they grow, they have that tendency to feel free. They want to get that freedom wherein they don't have any adult supervising and anything. That's when the change, you will start seeing the change when your child probably hits that teenage mark, you know. You will see that drastic change. But then, you know what, you are right. Even if they are going out with their parents at a very young age and they know the norms of behavior, and if we know this is what is happening these days with the teens, you constantly, you know, make sure that they understand the you know, the logistics of behavior when they are stepping out and how they must really make sure that they follow the rules and regulations of being a good citizen. And if that is inculcated from the beginning, I think that is going to go ahead and make a responsible citizen also, right? Yeah.
2: Right. You just need to cultivate all those things when they are like starting from 4 or 5 years.
0: Yeah.
2: They'll understand you very quickly once they are in teens.
0: Yeah.
2: That's what I feel.
0: Yeah, absolutely, Ruhi. Well said. Well, thank you so much, Ruhi, for your call. Please hold the line. I would love to give you, because you told me that you have, toddlers and you have a 10-year-old. We would love to give you Fun Pizza Kitchen ka $10 ka gift card from a Frisco location.
2: Thank you.
0: Sure thing. Absolutely. My pleasure. And it is my pleasure to bring up this topic, and we'll continue doing this every Tuesday, wherein we'll take up a topic and we'll maybe make sure all the parents. I would have really loved, I have told this before and I'm going to say it again, agar koi mere saath abhi teenager judte na to mujhe bahut acha lagta hai, lekin I guess they are in school or college right now and they cannot, but ye conversation unke saath karne mein bhi ek alag perspective hame milta ki why this thing happens, they know the consequences lekin phir bhi kyun karte hain ye, agar koi teenager judte ya agar aap apne teenager se pooch ke agar hame is bare mein bata sake to bahut achhi baat hogi. You are listening to Gupshup Gali with me too. Everything that matters to you, me, and us as a community, we'll talk here.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Aaja meri gaadi mein baith ja.
8: Baith jaun? Pakka? Kali to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
9: Wo thoda overheating tha.
8: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो.
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
14: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha hai.
13: रोज का सेम प्रॉब्लम.
15: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
16: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग.
17: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
18: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
19: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
20: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
19: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
20: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
19: ये क्या होता?
20: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
18: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
21: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
22: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
21: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
23: गुडनेस इज अ ब्यूटीफुल थिंग. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
0: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Funisia Radio.

0: इट इज फ्रॉम द फिल्म सरकार 3 जो आज के दिन 12th of May 2017 को रिलीज हुई थी. इसीलिए तो ये मतलब इतना अमेजिंग आरती जो है ये गणेश जी का गणपति का वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में होना एज द मोर टू द चार्म एक्चुअली दैट्स व्हाट आई वांट टू से. एंड इट इज सरकार 3 लेडीज एंड जेंटलमैन जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी. वेल 12th of May इट इज और 2026 जो साल है और ये साल आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा होपफुली. लेकिन यही जो चीज़ें हैं ना जो लाइफ की जो चीज़ें हैं ये कभी बताकर नहीं आती हैं. इनफैक्ट एक्सीडेंट्स तो एवं हो जाती है ना कई बार आपकी गलती नहीं होती है उसमें. एंड ऐसे में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो यू डेफिनेटली डिजर्व ए कॉम्पनसेशन. और अगर आप केस के शुरुआत में ही अगर आप कनेक्ट करते हैं विथ अटर्नी ओमर ख्वाजा ही विल बी डेफिनेटली एबल टू हेल्प यू थ्रू एंड थ्रू. अगर मान लीजिए अभी ये मैसेज सुनने के बाद कुछ वक्त हो चुका है आपके लेकिन यू स्टिल हैव द प्रूफ of the accident and all of that, the details, you know, I am not an attorney to tell you when to go. Lekin if you have all the details, you might want to get in touch with attorney Omar Khwaja. You never know how he can help you and you will never know until you get in touch with him how he can help you because there is a big promise that they come with. It is you don't pay until you win. That is until you get your compensation. In either case, it is a situation that will help you to figure out stuff, right? And at the end, hopefully in most of the cases that they win they have a big clientele ship that you will see if you try and find out online. Attorney Omar Khwaja I'm talking about aur inki website hai attorneyomar.com 4693005046. Be it you know a car accident, a slip and fall case or if it is a workplace injury and you think you need a compensation, reach out to attorney Omar Khwaja and his team. Thank you once again ladies and gentlemen for tuning in. Ye hai Gapshap Gali with me too. Ek sawal jo humne aap logon ke samne rakha aur usi ke chalte humne bahut sari discussion ki. Har Tuesday ko main aise ye connect lekar aungi aap logon ke sath jahan par hum sachi mein apne se judi baatein karenge lekin uske beyond it is always fun and fantastic on Funisha Radio 104.9 FM. Everything that is important, relevant and everything that is entertaining right here for you. So, abhi mera jo sawal hai, it is to do with another film which released on the same day as Sarkaar 3. जी हाँ 12th May 2017 को रिलीज हुई थी एक और फिल्म जिसको मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे. ठीक है उसका गाना लगाने वाली हूँ. यू हैव टू गेस द नेम ऑफ द मूवी एज सिंपल एज दैट लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड ये मैं करना चाहती हूँ नॉट फॉर एनीथिंग जस्ट फॉर फन बिकॉज मुझे याद है कि इस गाने का टीजर निकला था पहले. एक ज़माना वो था जब फिल्म के ट्रेलर्स एंड टीजर्स निकलते थे और फिर गानों के भी टीजर्स निकलने लगे. एंड इट वॉज आई थिंक दे मेड अस वेट फॉर अ बिट एंड देन रिलीज द एंटायर सॉन्ग बट द टीजर इटसेल्फ टोल्ड अस दैट वी वर बाउंड टू लव द सॉन्ग. मैं वो टीजर प्ले कर रही हूँ आप देखते हैं गाना गेस कर पाते हैं कि नहीं. बस इतना सा एक प्ले करना चाहती हूँ. दिस इज ऑल फॉर फन लेडीज एंड जेंटलमैन दैट आई वांट टू आस्क यू लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. जी हाँ ये वो गाना कि जब वो रिलीज हुआ ना मैंने कितनी बार रिपीट पे सुना है इस गाने को मुझे अंदाजा नहीं है. एंड आई एम श्योर यू ऑल डिड इट एज वेल. ये वो एक गाना है कि जब मैंने ये गाना सोनू निगम का वर्जन जब सुना तो मुझे लगा कि नहीं यार फीमेल वर्जन में एक अलग चमक है एक अलग मैजिक है. नॉट एज मच इन द डुएट वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग. ऑलराइट यू नो व्हाट You know I love it. I know you love it as well. You're live on air. जल्दी से गाने का नाम बता दी. मैंने पता नहीं कि सवाल ही क्यों पूछा आप लोगों से. पता है कि पता ही होना चाहिए आप लोगों को. बताइए कौन सा गाना.
1: मैं try कर दी. I don't have
0: the vibe. Okay. All right.
1: माना कि तुम यार नहीं आते प्यार नहीं.
0: Absolutely right. बिल्कुल मेरी प्यारी बिंदु जो आज के दिन रिलीज हुआ था. थैंक यू.
1: आई से तुम्हारी.
0: हाँ वो आयुष्मान की तो थी ना बिंदु इसलिए आपने तुम्हारी कह दिया होगा.
1: सही.
0: थैंक यू जी. व्हाट्स योर नेम.
1: ज्योति ना.
0: Rubina, thank you very much for your call. And this is the song that teased us for a bit. And then jab release hua na, oh ho ho ho ho ho.

0: आप लोगों के लिए एक और सवाल लेकर आने वाली हूँ, और इस सवाल के बदले में आपके लिए पेज 3 से कुछ है, और वही मैं आपको देना चाहती हूँ यहाँ पर. इट इज अबाउट यू नो गेटिंग दिस गिव अवे फ्रॉम पेज 3, और अगर आप मुझे सही जवाब देते हैं तो आपको क्या मिल सकता है, मैं वही जानने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सॉकर पसंद करते हैं, देन हियर समथिंग रियली एक्साइटिंग जस्ट फॉर यू. मैकिनी चुपा काब्रास FC इज किकिंग ऑफ देयर होम ओपनर, और ये May 16 को होने वाला है. एंड गेस व्हाट, पेज 3 ईटरी अलॉन्ग विथ फनीशा रेडियो, दे आर गिविंग अवे ए चांस टू यू टू बी देयर लाइव, एंजॉय द गेम, एंड दे आर गिविंग अवे 2 फ्री टिकट्स टू लकी लिसनर्स. सो यू एंड योर प्लस वन कैन एंजॉय एन एक्शन पैक गेम राइट हियर इन डैलस फोर्ट वर्थ, एंड दैट इज एट पेज 3 ईटरी. तो जरूर आप हमें मुझे कॉल करें इफ यू वॉन्ट टू रियली बी पार्ट ऑफ ऑल द एक्साइटमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो आप लोगों के लिए सवाल पेज 3 से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि क्या है ना कि जिन हस्ती के बारे में मैं पूछने वाली हूँ वो कुछ पेज 3 से एसोसिएटेड रही हैं. सी स्टारडस्ट मैगजीन की फाउंडिंग एडिटर रही हैं ये, एट जस्ट 23, एट द एज ऑफ 23 शी स्टार्टेड. यू हैव टू गेस दैट पर्सन. ऑलराइट, शी लेटर बिकेम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस ऑथर्स. किन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर राइटर्स वो कौन है, वो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से. यस, इफ यू नो द आंसर आई एम ऑल ईयर्स. 9722355555 स्टूडियो का नंबर है, बताइए. यू आर लाइव ऑन एयर. हाय, कैन यू हियर मी? ऑल राइट, लुक्स लाइक द कॉल ड्रॉप, सो आई एम गोइंग टू go to my next caller right here. It is the question that you have to answer right now for page 3 eatery 2 free tickets. Bataiye kya hai jawab?
1: Is it Bharati Pradhan?
0: No, it is not Bharati Pradhan. I am going to jump to my next caller here. 972-235-5555 number in the studio. You are live on air.
2: Hi, this is Urvashi.
0: Urvashi, tell me, do you know the answer?
2: Is it Shobha Day?
0: It is Shobha Day indeed. Absolutely correct that you are. I have to tell all my listeners, one of India's most popular writers, and she has seen it all, life as a model, a copywriter, a journalist, a socialite, a scriptwriter, a best-selling novelist, and a busy mother of 6 children. That's Shobha Day, and you are absolutely right. What's your name?
2: Urvashi,
0: thank you Urvashi for your call, and the 2 tickets definitely go to you. So please hold karein, because I would like to take all your details off air and get ready for joining the exciting live match that you can watch at page 3. Theek hai?
2: Awesome.
0: Thank you, and that's Urvashi that we have chosen for this giveaway. Congratulations to her. And पता है शोभा दे का नाम आते ही ना मुझे कुछ टीवी सीरीज जो हुआ करती थी ना उनका याद आ गया, जो फर्स्ट द वन दैट शी रोड विच हैड 800 एपिसोड्स, यू नो 1995 से शुरू होकर पूरे 1997 तक चला था. दैट वॉज मंदिरा बेदीज, नो इट वॉज एक्चुअली किटू किडवानी, सॉरी किटू किडवानी स्वाभिमान. जी हाँ, स्वाभिमान की one of the writers she was, which was directed by Mahesh Bhatt. Kitu Kidwani, Anju Mahendru, Rohit Roy, bahut sare characters the, bahut complicated story tha. Harsh Chhaya, Manoj Bajpai was in this one, Ashutosh Rana, and then Deepak Parashar, bahut sare log the. Ji haan, so one of the first that she wrote for any series was Swabhiman, and uske baad unhone aur bhi likhe, lekin I think the most popular that she was in the TV world, it was Swabhiman. Uske बाद सुकन्या आया, फिर किटी पार्टी, फिर पंचम, एंड स्टूडियो वन के साथ साथ लिपस्टिक वॉज ऑल्सो रिटन बाय शोभा दे. थैंक यू उर्वशी फॉर योर आंसर. और यहाँ पे लिपस्टिक एक जो नया गाना रिलीज हुआ है इन द वॉइस ऑफ अदनान समी, आई थॉट इट विल बी जस्ट परफेक्ट टू स्लिप इट इन.

Now listen, this is a brand new song by Adnan Sami which released just today, कुछ 10 घंटे पहले ही रिलीज हुआ है ये गाना. और ये जो एक प्लेफुल एक ब्लेंड मिला आपको एनर्जी का, सेल्फ एक्सप्रेशन का, विच सिम्बलाइजेस कॉन्फिडेंस एंड दैट एफर्टलेस मोमेंट व्हेन समथिंग एज सिंपल एज लिपस्टिक ट्रांसफॉर्म्स मूड, प्रेजेंस एंड एन एटीट्यूड. सीरियसली मुझे एक वक्त याद है कि जब हम लोग ना मेकअप वगैरह हमारे जब हम छोटे थे तब अलाउड नहीं था. इवन एज टीन्स हमारे लिए मतलब अल्टीमेट मेकअप जो होता था वो होता था लिपस्टिक लगाना. और वो लिपस्टिक लगा के हम तो भैया मतलब ऐसे सोचते थे कि पता नहीं कितने ही सुंदर लग रहे हैं, यू नो. सो दोज वर द टाइम्स रियली एंड दैट सॉर्ट ऑफ रिमाइंडेड मी ऑफ दैट फॉर सम रीजन. बट एनी वेज, गोइंग ऑन विथ अनदर अदनान समी गाना विच आई एम रियली आई एम ग्रोन फॉन्ड ऑफ. पता नहीं कुछ तो गाना है इस गाने में, कुछ तो बात है जो वाकई में एक राहत लेकर आता है. बस यही गाना लेकर आने वाली हूँ, विच इज टाइटल्ड राहत. लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट हियर ऑन फर्नीचर रेडियो 104.9 FM. लेकिन जाने से पहले ना एक और बात जो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, इट इज टू डू विथ देसी मंडी. लेडीज एंड जेंटलमैन, जो बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर है जिसके बारे में हम कई दफे आपको बता चुके हैं, यहाँ पर आपको ग्रोसरी के लिए अमेजिंग डील्स मिलते हैं. लेकिन एक और चीज जो ध्यान रखें कि जब आप जैसे ग्रोसरी खरीदने जाते हैं तब लगती है भूख, और भूख आपको और भी ज्यादा लगेगी जब आपको पता चलेगा कि बाई वन गेट वन फ्री डील्स जो इनके मंडे से लेकर थर्सडे तक हैं, कमाल के डील्स हैं. मंडे और वेंसडे को बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस. वाह, तो मतलब आप जाएं और अपने साथ किसी और को लेके जाएं या घर लेकर आएं, ये आपकी मर्जी. लेकिन ये बाय वन गेट वन फ्री डील आपके लिए मंडे और वेंसडे को, ट्यूसडे और थर्सडे को बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसास एंड चाट्स. यार सीरियसली, एवरी वीकडे फ्रॉम 5 PM टू 9 PM, नो मिक्स एंड मैच दैट इज अलाउड. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होते हैं, जाएंगे तो पता भी चल जाएगा आपको. देसी मंडी विच इज इन लुइसविल, डू रिमेंबर दैट. मोर फ्लेवर, मोर सेविंग्स ऑल वीक लॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज देसी मंडी और ये है गपशप गली विथ मी टू ऑन फर्नीचर रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

अ वेरी गुड आफ्टरनून टू माय फाइनेंशियल फैमिली. आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो आफ्टरनून अड्डा विद मी, यानी कि आपकी दोस्त आपकी आरजे सिमी एके आरजे देसी गर्ल. और आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट हर इमिग्रेंट, हर स्टूडेंट, हर वर्किंग प्रोफेशनल ने कभी ना कभी तो फील किया ही है. और वो टॉपिक है वो एक चीज जो आपने यूएस आके सीखी. कभी लाइफ ने सिखाया तो कभी लोनलीनेस ने, कभी बिल्स ने, और कभी तो कॉस्को के बल्क पैक्स ने. अमेरिका आके ना हम सब बदलते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं. कुछ लोग बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, कुछ इमोशनल, और कुछ लोग तो फाइनली डिशवॉशर यूज करना सीख ही लेते हैं. तो आपकी क्या स्टोरी है हमें कॉल करके बताइए 972-235-5555 पे. मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुनते रहिए फन एशिया रेडियो.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

अगर आप भी अपनी हीरिये को हीरा गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स में, जो कि लोकेटेड है प्रेस्टन रोड एंड फ्रिस्को में। ये है आपका गो टू डेस्टिनेशन स्टनिंग डायमंड रिंग्स के लिए, इयररिंग्स के लिए, नेकलेसेस और हर उस मोमेंट के लिए जिसको आप स्पेशल मानते हैं और एक्स्ट्रा स्पार्कल डालना चाहते हैं उन मोमेंट्स में। फ्रॉम क्लासिक सॉलिटेयर्स टू कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स, इनका डायमंड कलेक्शन ब्लेंड बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है और इनके डिजाइन्स टाइमलेस है, इटर्नल है, और ये है परफेक्ट फॉर एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरी या फिर सिर्फ सेलिब्रेटिंग लव के लिए। तो आप अभी के अभी अपना मोबाइल ऐप पे जाएं मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स के, और आपको और अधिक जानकारी मिल सकती है। थोड़ा गिफ्ट विफ्ट कर दीजिए ना अपने स्पाउसेस को, अच्छा लगता है।

0: जो पास आई।
1: दोस्तों, इस सॉन्ग पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि वैसी कौन सी चीज है जो आपने यूएस में आके सीखी, और हमें कॉल आया शहनाज जी का और वो बता रही हैं कि वो कनाडा में शिफ्ट हुई थी और उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया वगैरह होता नहीं था, तो उनको पता नहीं था कि जब आप कंट्री चेंज करते हैं तो टाइमिंग्स चेंज हो जाती हैं। और उन्होंने जो है बार बार, वो यंग थी, कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी, और उन्हें रियलाइज हुआ कि वो तो सारे ही क्लासेस में लेट हो रही हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आए, वो बार बार क्लासेस मिस करे बहुत सारे। फिर वो गई अपने फैकल्टीज के पास, उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या मुझे कुछ टाइमिंग मिसकम्युनिकेट हुआ है। तो फिर ऑफ कोर्स फैकल्टीज ने थोड़ा हंसा होगा और उनको बताया होगा कि ऐसा है कि तुम तो अभी इंडिया के टाइमिंग से चल रही हो, वक्त बदल चुका है और तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। अब चाहे हम इंडिया में होते हैं या पाकिस्तान में, घर पे सब कुछ मिल ही जाता है, कपड़े फोल्ड किए हुए मिल जाते हैं, खाना खाने को टेबल पे मेज पे रखा होता है, और यहाँ तो आप ही शेफ हैं, आप ही क्लीनर हैं, और आप ही अपना इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी हैं। जी, यूएस आके हमने सबसे पहले जो सीखते हैं ना, वो है इंडिपेंडेंस। और ऑनेस्टली, जब आप खुद ग्रॉसरी शॉपिंग करना सीख जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब जाके अडल्टहुड का ग्रेजुएशन हो चुका है, वो डिग्री मिल चुकी है। आप भी अगर हमारे साथ कोई ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं कि आपने यूएस में आके क्या सीखा, तो हमें कॉल कीजिए और बताइए 972-235-5555 पे।

0: दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक बहुत ही एक्साइटिंग गेस्ट, मिस शेफाली पंजवानी फ्रॉम माय फैमिली होम लोन. शेफाली जी, हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: गुड आफ्टरनून टू ऑल फाइनेंशियल लिसनर्स.
0: जी, थैंक यू शेफाली जी फॉर ज्वाइनिंग अस. और आज हम और हमारे लिसनर्स आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो बिजनेस ओनर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं या 1099 अर्नर्स हैं, उनके लिए होम लोन लेना कितना डिफिकल्ट या डिफरेंट होता है और ऐसा क्यों होता है?
1: श्योर, ग्रेट क्वेश्चन. उनके लिए डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि उनकी इनकम कंसिस्टेंट नहीं होती है, मींस वो फ्लक्चुएट होती रहती है, जब कि W2 में ऐसा नहीं होता है, उसमें इनकम फिक्स्ड होती है. इसके लिए उनके लिए थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है क्योंकि सिनेरियो कम्प्लीटली डिफरेंट है. ट्रेडिशनल लोन्स जो होती है दैट प्रिफर स्टेबल इनकम, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन पूरा सिर्फ स्टेबल बेस्ड ऑन द टैक्स रिटर्न्स पे होता है कैलकुलेशन इनकम का, जबकि 1099 का इवैल्यूएशन थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंटेशन भी कंसिडर किया जाता है ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ द इनकम. तो उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, बैंक स्टेटमेंट प्रोग्राम होता है जिसमें 12 to 24 months की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर डिसाइड किया जाता है क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिपॉजिट इन लास्ट 12 to 24 months. तो ये उनके लिए डिफरेंट थोड़ा होता है. और दूसरे भी ऑप्शन अवेलेबल है बोरोवर्स के लिए जो फ्रीलांसर्स है, 1099 है, एंड बिजनेस ओनर्स है जिनके ड्रॉ फ्लक्चुएट होते रहते हैं.
0: थैंक यू सो मच शेफाली जी, ये तो काफी इन्फॉर्मेटिव था. और एक और सवाल है आपसे कि अगर कोई घर खरीदने का सोच रहा है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए?
1: सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि यू नीड टू सिट डाउन विद द मॉर्गेज प्रोफेशनल, डिस्कस योर सिनेरियो बेस्ड ऑन वेदर यू आर गोइंग टू ट्रेडिशनल राउट और नॉन ट्रेडिशनल राउट. आपकी क्रेडिट प्रोफाइल कहाँ स्टैंड कर रही है, कहाँ वर्कआउट करने की जरूरत है. इवन इफ यू आर लुकिंग डाउन फ्रॉम नॉट टुडे, डाउन द रोड लाइक विद इन अ ईयर और सो, सिट डाउन विथ अ मॉर्गेज प्रोफेशनल एंड डिस्कस वॉट कैन बी डन इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउ कैन योर प्रोफाइल मेड स्ट्रॉन्गर for better approval and better terms for fast closing. तो उसके पहले, उसके लिए सबसे पहले यही स्टेप है कि आप मॉर्गेज लोन ऑफिसर के साथ में बैठ के आपका सिनेरियो डिस्कस कीजिए एंड देन गो फ्रॉम देयर विच राउट यू नीड टू चूज. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन डिस्कसिंग योर लोन ऑप्शंस और एनी काइंड ऑफ रेसिडेंशियल फाइनेंसिंग नीड्स, प्लीज गिव अस अ कॉल एट 4697343338.
0: थैंक यू सो मच शेफाली जी. आई जस्ट रिपीट योर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर आवर लिसनर्स, इट्स 4697343338. इनका वेबसाइट भी है myfamilyhomeloan.com. और जैसा कि शेफाली जी ने बताया कि आप बिल्कुल एक मॉर्टगेज एक्सपर्ट से कंसल्ट करें जब भी आपको लोन रिक्वायरमेंट वगैरह हो. एंड आई होप कि ये इंटरव्यू आपके लिए यूजफुल रहा होगा.

0: मुझे। मेरी राखी पहनता है ना तू? तू मेरे प्रोटेक्शन में है।
1: तुझे
0: मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी कभी भी।

तो दोस्तों, हमने आज के सेगमेंट में पूछा था कि यूएस आके आपने क्या सीखा, वो कौन सी स्टोरी है, वो कौन सा पर्टिकुलर स्किल है, टैलेंट है जो आपने यूएस में आके डेवलप किया। और हमें कॉल आया अली जी का और उन्होंने बताया कि वो यूएस आए थे जब वो 31 इयर्स के थे और जो उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज सीखी है यूएस में आके वो है डॉलर कमाना। वाह जी वाह, क्या जवाब दिया है। हर कोई यही कर रहा है, हर कोई इसीलिए तो यूएस आता है मोस्टली कि वो डॉलर कमा सके, या फिर वो पढ़ाई कर रहा है या डॉलर कमाने की तैयारी में जुटा है, कोशिश कर रहा है। और सरिता जी ने भी बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि यूएस में आके हम लोगों ने इंग्लिश बोलना सीखा अच्छे से और उसको फ्लुएंट किया। आई वुड से इंग्लिश हम बेसिक लेवल पे तो सीखते ही हैं अपने स्कूल में, अपने कंट्री में, लेकिन यहाँ आके जो प्रैक्टिस होती है ना एकदम तड़ बोलने की, वो तो यूएस में आके ही हो सकता है। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप सुनते रहिए फन एशिया रेडियो और एंजॉय करते रहिए द अमेजिंग प्लेलिस्ट।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
2: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
1: कैसे?
2: पेज 3 ईटरी?
1: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
2: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
1: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
3: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
3: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
5: सब कुछ साफ रख सकते हो,
6: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
7: क्योंकि ये कौन बोला?
6: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
8: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
9: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
9: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
13: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
0: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.

और दोस्तों ये सच है, जिस दिन मैं भी कुछ अच्छा ना खाऊं ना तो मैं भी यूं ही पागल पागल फिरती हूँ। बट मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ मैं रेगुलरली जाती रहती हूँ खाने के लिए और अपना पागलपन थोड़ा कम करने के लिए, और वो है Page 3 Eatery जो कि सिचुएटेड है Hub 121 में। और Page 3 Eatery है ना, यहाँ पे इंडियन स्ट्रीट फूड अपने मॉडर्न फ्लेवर से मिलता है, जिससे कि फिर बनता है कबाब, चाट, फ्यूजन बाइट्स, मॉक टेस्ट। सुन के ही लंच टाइम है, मेरे को तो खाने का मन हो रहा है। और ये बहुत ही वाइब्रेंट है, इसकी वाइब्स काफी अच्छी हैं ब्रंच के लिए, लंच के लिए, या फिर सिंपल सा प्यारा सा डिनर के लिए। और ये परफेक्ट जगह है फूडीज के लिए, डेट्स के लिए और फ्लेवर चेजर्स के लिए। अगर आपको इस पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जा सकते हैं Page 3 Eatery.com पे और इंजॉय कीजिए अच्छा अच्छा खाना। और तब तक, जब तक आप वहाँ नहीं जाते हैं, इंजॉय कीजिए अच्छा अच्छा गाना।

दोस्तों, मैंने आज जो टॉपिक पूछा था आपसे वो ये था कि आपने यूएस में आके वो कौन सी चीज़ सीखी। बहुत लोगों ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब दिए और कुछ लोगों ने मुझसे मेरा एक्सपीरियंस भी पूछा। तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली अमेरिका जो है आपको बहुत कुछ बहुत जल्दी सिखा देता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है वो है कि खुद के साथ रहना, मतलब खुद की कंपनी इंजॉय करना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि घर वाले जो है बिजी होते हैं, फ्राइडे नाइट पे साथ में कहीं जा रहे होते हैं, कोई फेस्टिवल होता है तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और उन लॉन्ग वीडियो कॉल के बाद का जो साइलेंस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है। और तब जब ये जो लोनलीनेस होता है, तब जो इंसान सीखता है वो है अपने आप के साथ रहना, अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करना। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अगर आप खुद की कंपनी इंजॉय करना सीख जाओ ना, अगर आप अकेले रहना सीख जाओ और खुश रहना सीख जाओ अकेले, तो फिर आपसे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डायलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
3: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
4: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
3: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
4: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
3: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
4: एग्जैक्टली। अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
3: नंबर बोल जल्दी।
4: कॉल James at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com.
5: Connecting America, जहां smart business owners turn costs into cash.
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
4: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
12: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
4: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
3: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
13: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: भाई, ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
3: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
4: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
3: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
14: मे 14th टू मे 17th, अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स। रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org। पॉज द नॉइज, meet yourself.

दोस्तों आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो, ये था छैया छैया और अभी हमारा अच्छा अच्छा गाना का सिलसिला शुरू रहेगा। कीप एंजॉयिंग फन एशिया रेडियो, यू आर लिसनिंग टू आरजे सिमी।

Yeah.

0: दोस्तों, हमने अपना गिव अवे राउंड का क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वो क्या है जो एक मिनट में एक बार, एक मोमेंट में दो बार, लेकिन थाउजेंड ईयर्स में एक बार भी नहीं आता। सोचो सोचो, कॉल करके बताओ मुझे।
1: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
6: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: That voice, the one you've had on repeat, is about to come alive. Fun Asia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Sambuca Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703-732-1777.
13: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
14: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
15: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 FM फनीशिया रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण लेकर मंडे टू फ्राइडे हाजिर रहती हूं 2:30 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 2:30 PM टिल 5 PM. एंड एवरी डे आई हैव अ डिफरेंट फ्लेवर फॉर यू. कल था मंडे, पसंद आपकी मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे ने प्ले करी. और आज है ट्यूजडे. ट्यूजडे को आफ्टरनून ड्राइव टाइम में लेकर आती हूँ आपके लिए बॉलीवुड स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट डालते हैं हम एक ऐसे स्टार पे जिसने हमें दिए कुछ बेहतरीन गाने बॉलीवुड की फिल्मों के थ्रू, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, सिंगर्स हों, आर्टिस्ट, किसी भी किस्म के आर्टिस्ट हों, लिरिसिस्ट हों, एनीवन हु हैज प्लेड अ रोल इन गिविंग अस सम ब्यूटीफुल म्यूजिक इन बॉलीवुड इज हु वी सेलिब्रेट राइट हियर ऑन बॉलीवुड स्पॉटलाइट. और आज की स्पॉटलाइट हमने डाली है एक ऐसे आर्टिस्ट पे जिनकी आवाज सदियों में एक बार आती है, और ये वही आवाज है. दिस इज नन अदर देन द डायनामिक अरिजीत सिंह. लेट्स बिगिन दिस जर्नी. और अभी से मैं आपको बता दूं कि अरिजीत सिंह की ये जर्नी होने वाली है 2 या 3 एपिसोड्स पे मुनहसिक. तो 2 एपिसोड्स तो मुझे लगता है कि बनेंगे ही बनेंगे. अगर तीसरा भी बने तो हम कर लेंगे, क्योंकि गाने इतने ज्यादा हैं और जस्टिस करना बहुत जरूरी. दिस इज अरिजीत सिंह.

What a versatile singer this person is. We are celebrating Arijit Singh. Bollywood Spotlight में हमने spotlight डाली है और वही spotlight अब मैं आप पे move करने वाली हूँ. We are listening to, you are listening to Conversation Corner with Sunehri Kiran, brought to you by Fun Pizza Kitchen. जी हाँ जी, सबसे पहले तो ये कि Fun Pizza Kitchen वो जगह है जहाँ आपको, जैसे हम पिज्ज़ा हमारा खाने का दिल होता है, लेकिन साथ साथ ये भी दिल होता है कि कुछ देसी सा ट्विस्ट आ जाए, तो वो देसी ट्विस्ट आपको Fun Pizza Kitchen में मिलेगा. चाहे आप वेज लवर हैं या नॉन वेज लवर हैं, दे हैव अ स्लाइस फॉर यू. यू आर गोइंग टू एंजॉय Fun Pizza Kitchen. चेक आउट देयर मेन्यू. funpizzakitchen.com इज वेयर यू नीड टू लॉग ऑन. चेक आउट देयर मेन्यू, देयर लोकेशंस एंड व्हाट दे आर ऑफरिंग. और ये कॉन्वर्सेशन कॉर्नर आपके लिए लेकर आए हैं Fun Pizza Kitchen. यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग अ $10 गिफ्ट कार्ड. और ऑल यू हैव टू डू इज, इफ यू विन, यू हैव टू गो टू Fun Pizza Kitchen लोकेटेड इन फ्रिस्को टू गो एंड कलेक्ट योर गिफ्ट कार्ड. तो ये आपको करना है जी, इफ कीप दैट इन माइंड while you are participating. और आप जी Conversation Corner with Sunehri Kiran में आज हम बात कर रहे हैं अरिजीत के कुछ खूबसूरत गानों की. तो मैं आपके लिए फोन लाइंस खोल रही हूँ. मुझे फोन करके बताइए अरिजीत सिंह के बारे में आपका क्या ओपिनियन है. उन्होंने अभी जब लेटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की कि वो अब बॉलीवुड फिल्मों से रिटायर कर रहे हैं या प्रॉब्ली ब्रेक पे जा रहे हैं या रिटायर कर रहे हैं, तो आपके क्या सेंटिमेंट्स थे और उसके साथ वो कौन सा गाना है अरिजीत का जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है. आप एक लाइन गुनगुना सकते हैं, लेकिन बस एक ही लाइन की शर्त है, क्योंकि टाइम ही इतना होता है, इतनी सारी फोन कॉल्स होती हैं कि हर शख्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस और उसको पिक करने के लिए मुझे बंद करनी होती है कॉल. तो 972-235-5555 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं. This is a Conversation Corner for you, brought to you by Fun Pizza Kitchen with Sunehri Kiran. फोन कीजिए और मुझे बताइए अरिजीत सिंह का कौन सा गाना आपका फेवरेट है. आप एक लाइन गुनगुना सकते हैं. और साथ ही साथ अरिजीत सिंह ने जब अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस किया तो आपको के क्या ख्याल थे इस बारे में. वंस अगेन द नंबर इज 972-235-5555.

ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स. गाना चल रहा था इसीलिए मैंने ऑफ एयर कॉल्स ले लीजिए. और आज की जो हमारी लकी विनर है वो है रिचा. रिचा, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज गिव मी अ कॉल 972-235-5555.

जी हाँ, चन्ना मेरेया एक और खूबसूरत गाना, मतलब एक से बढ़कर एक गाने। इसीलिए मैं कह रही थी कि एक एपिसोड में हम कतई जस्टिस नहीं कर पाएंगे अरिजीत सिंह के साथ, तो दो एपिसोड्स तो बॉलीवुड स्पॉटलाइट की उनके लिए डेडिकेट करनी ही करनी है। बताती चलूँ आपको कि अरिजीत सिंह वॉज रेज इन अ म्यूजिकली इंक्लाइंड फैमिली एंड ही बिगैन ट्रेनिंग इन म्यूजिक और बहुत ही अर्ली एज में। हिज मटर्नल आंट वॉज ट्रेन्ड इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जबकि उनकी मटर्नल ग्रैंड मदर जो हैं वो गाना गाया करती थी। एंड हिज मटर्नल अंकल प्लेड द तबला, जबकि हिज मदर ऑल्सो सैंग एंड प्लेड द इंस्ट्रूमेंट। तो ही अटेंडेड एक्चुअली द राजा विजय सिंह हाई स्कूल, बाद में उन्होंने श्रीपत सिंह कॉलेज ज्वाइन किया जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी के साथ एसोसिएटेड था। ही मतलब अपनी एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि मैं एक डिसेंट स्टूडेंट था, बट उनका जो इंक्लिनेशन था वो हमेशा म्यूजिक की तरफ था। एंड दैट्स व्हाट आई हर्ड हिम टेलिंग दैट यू नो म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन द फर्स्ट पैशन, द फर्स्ट लव ऑफ माई लाइफ। एंड चूंकि अपने फैमिली में इतने लोगों को गाते सुना था उन्होंने, तो उनका दिल था कि वो भी कुछ ऐसा ही काम करें। और फिर क्या हुआ वो बताऊंगी आपको, लेकिन इस गाने के उस पार्ट। दिस इज अनदर ब्यूटिफुल नंबर संग बाय अरिजीत सिंह एज वेल एज समीरा कोपिकर।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahun.
7: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
8: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
9: Astrology readings for guidance only and results may vary.
10: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
11: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
10: कैसे?
11: पेज 3 ईटरी?
10: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
11: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
10: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
12: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट.
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
14: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
15: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
16: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
17: Chicken banana.
18: Chicken banana?
19: Bro, banana nahi, banana.
17: मतलब make the chicken right.
18: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
19: Goodness is a beautiful thing. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqah and donation. Visit SIUTNA.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
20: कितने आदमी थे?
21: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

You tuned in to 104.9 FM Funny Share Radio सुन रहे हैं आप Afternoon Drive Time with सुनहरी किरण के साथ. मैं किरण हाजिर हूँ Bollywood Spotlight every Tuesday 2:30 to 5 PM आपके लिए लेकर आती हूँ. और आज की Spotlight हमने डाली है अरिजीत सिंह पे. उनके गाए हुए कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ. आपको बताऊं जी कि अरिजीत सिंह रिसीव्ड हिज ट्रेनिंग इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद हजारी एंड इन तबला फ्रॉम धीरेन्द्र प्रसाद हजारी. और ही वॉज ऑल्सो ट्रेन्ड इन रुबेंद्र संगीत या रबेंद्र संगीत और फिर वेस्टर्न पॉप म्यूजिक में भी उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की. मतलब हर तरह की चीज सीखी. एंड ही बिगैन ट्रेनिंग अंडर द हजारी ब्रदर्स एट द एज ऑफ 3 एंड एट द एज ऑफ 9 उनको मिला ही रिसीव्ड अ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर वोकल ट्रेनिंग इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. तो मतलब मेहनत जो है वो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी. वो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं. तो बहुत पहले से मेहनत शुरू हो चुकी थी उनकी. और फिर हमने देखा वो अरिजीत का कमाल जो कि बन गया हम सब के मनपसंद गानों में से. मतलब 100% गारंटीड है कि कोई ना कोई ऐसा गाना आपको ज़रूर पसंद होगा, मनपसंद होगा आपका, जो कि अरिजीत की आवाज़ में होगा.

पद्मावत से सुन रहे थे आप ये गाना ग्रोइंग अप. एक इंटरव्यू में अरिजीत ये कह रहे थे जी कि ग्रोइंग अप ही यूज्ड टू लिसन टू कंपोजर्स लाइक मोजार्ट एज वेल एज बीथोवन, और साथ ही साथ मॉडर्न बंगाली म्यूजिक भी उनको बहुत पसंद था. और उनका कहना है कि म्यूजिशंस जो उनको इंस्पायर किया, जिन्होंने उनमें बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद राशिद खान, जाकिर हुसैन, आनंद चटर्जी, वो उनकी जिंदगी में इन्फ्लुएंसेस बने. और साथ ही साथ ही हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एडमिरेशन फॉर सिंगर्स लाइक किशोर कुमार, हेमंत कुमार और मना दे. और ये जब सब कुछ मिला तो बन गए कौन? अरिजीत सिंह. आपको हर तरह का जॉनर उनका सुना रही हूँ, और कुछ स्लो गाने, कुछ मीठे गाने, कुछ प्यारे गाने और कुछ हैपनिंग गाने, जैसे कि ये

जी हाँ जी, ये भी अरिजीत थे। और अब जो मैं आपके लिए गाना प्ले करूंगी वो भी अरिजीत, यानी कि वर्सिटैलिटी की, वो कहते हैं ना टैलेंट की दुकान, अगर कोई एक इंसान है तो वो है अरिजीत सिंह। डेफिनेटली हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में। आज मैंने रोशनी उन्हीं के ऊपर डाली है, और एक नहीं बल्कि दो एपिसोड लेके आऊंगी आपके लिए। नेक्स्ट ट्यूजडे बॉलीवुड स्पॉटलाइट विल ऑल्सो शेड द लाइट ऑन अरिजीत सिंह, बिकॉज एक एपिसोड में उनके साथ और उनके गाए हुए गानों के साथ और आपके साथ एज अ लिसनर और मेरे साथ भी एज अ लिसनर जस्टिस नहीं हो सकता। अगला गाना प्ले कर रही हूं, लेकिन उससे पहले वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं जी कि अगर आप सोच रहे हैं ऑफ प्रिपेयरिंग योर यूएससीआईएस पेटिशन बट यू रियली डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, तो वेदर इट्स एन H4 EAD एक्सटेंशन या फिर F1 OPT एप्लीकेशन या फिर यू आर प्रिपेयरिंग, थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग द ग्रीन कार्ड पेटिशन फॉर योर होल फैमिली, नाउ यू कैन प्रिपेयर योर एप्लीकेशंस योरसेल्फ with step-by-step guidance. और ये आपको कहाँ मिलेगी? This will be at easypetition.com. That spelling is EAZY, easypetition.com. Along with that, if you have unfortunately lost your job while you are on H1 and you want to prepare a change of status application, तो वो भी आप easypetition.com पे आराम से कर सकते हैं. There are many other things that are available at easypetition.com. बहुत ही simple website है, they are guided है, design की गई है immigrants के लिए ताकि वो अपनी applications को confidently prepare कर सकें, उसके control को, you know, they can stay in control of the applications. So this is easypetition.com for you. Do check them out. Log in and देखिए कि वो कितनी आसान है, easy to navigate and how easy it is to do your things your way. And when you are checking out, do not forget to use the promo code FUNASIA. FUNASIA is the promo code जो आप इस्तेमाल करेंगे तो you will get a $30 credit. This is easypetition.com. And now back to Arijit Singh. This is taken from the movie Sonu Ke Titu Ki Sweetie.

0: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
1: रोज का सेम प्रॉब्लम।
2: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। Lumity लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं। Lumity का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
3: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
2: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
4: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल।
5: सब कुछ साफ रख सकते हो
6: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
7: क्योंकि ये कौन बोला?
6: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
4: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: That voice, the one you've had on repeat, is about to come alive. Funasia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Simbuka Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703-732-1777.
11: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Funasia Radio.

0: You tuned in to 104.9 FM Funny Share Radio. Bollywood Spotlight चल रहा है जी, afternoon drive time with सुनहरी किरण में. But इसके दरमियान ये time आ चला है जब मैं आपको connect करने वाली हूँ हमारे उरा डेट रिलीफ सेगमेंट के साथ. हमारे साथ मौजूद हैं अमन जी फ्रॉम उरा डेट रिलीफ, और वो हमें बताएंगे कि हाउ कैन उरा हेल्प यू मेक द राइट फाइनेंशियल चॉइसेस. लेट्स वेलकम हिम ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया. गुड आफ्टरनून अमन जी, हाउ आर यू डूइंग?
1: गुड आफ्टरनून फन एशिया सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार. सो दोस्तों, दिन गुजरता जा रहा है और ये महीने के बिल्कुल मिड में पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक चीज जो है वो कॉमन, वो सबके घरों में क्रेडिट कार्ड की मिनिमम चिट्ठियां आनी शुरू हो चुकी होंगी. तो अगर आप फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं जो पिछले महीने या पिछले साल की थी क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट करने की, तो इस बार जरा रुक जाइए, क्योंकि मिनिमम पेमेंट से क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतरता नहीं, सिर्फ प्रोलॉन्ग होता है, उससे आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है. तो आप एक टाइम पास करने जा रहे हैं और अपना 40% इंटरेस्ट में अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड सच में उतर जाए, तो कॉल उरा को कीजिए. आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, बिजनेस लोन हो जो अनसिक्योर कैटेगरी में फॉल करता है, पर्सनल लोन हो, या फिर गाड़ी रीपोजेस हो गई हो या टोटल हो गई हो, उस तरह के किसी भी लोन को अगर आप माफ करवाना चाहते हैं, नेगोशिएट कराना चाहते हैं, तो आप उरा को कॉल कर सकते हैं, जिससे आपका कर्जा भी उतरेगा, डेट टू इनकम रेशियो इंप्रूव करेगी, और साथ ही साथ ये कोई बैंकरप्सी नहीं है जिससे आपका कोई बैंकरप्सी का टैग आपके ऊपर लगेगा. स्कोर इंप्रूव जल्दी करेगा, लोन जल्दी अप्रूव हो जाएंगे क्योंकि डेट टू इनकम रेशियो इंप्रूव करेगी. तो आप मिनिमम पेमेंट भरते रहने से पहले अगर एक बार उरा को कॉल कर लें तो आपका आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाएगा. जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. यहाँ फिर आप मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं तो कॉल मी डायरेक्टली 9167763555, 9167763555, अगेन 9167763555, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. तो आगे से मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिएगा ताकि आपका बेनिफिट हो सके.
0: थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून अमन जी. वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम.
1: थैंक यू,
0: हैव अ गुड वन.

All right, जी, it is time now to give you the weather update. कि weather इस वक्त कैसा हो रहा है और आपको बताएं जी, today is Tuesday, May the 12th, 4:44 p.m. in the studio. और इस वक्त city of McKinney में है 79 degrees and it feels like 79 as well. दिन रहा sunny with highs in the lower 80s, जबकि शाम रहेगी clear with lows in the lower 60s. पोलन आज का 7.5 है, विच इज मीडियम हाई. ग्रास एंड ओक इज वॉट इज बॉदरिंग पीपल वेयर पोलन इज कंसर्न, जबकि यूवी इंडेक्स इज 9, विच इज क्वाइट हाई. सो इफ यू आर प्लानिंग ऑन गोइंग ऑन अ वॉक इन द इवनिंग और बी आउटसाइड वाइल द सन इज स्टिल देयर, तो अपनी सनस्क्रीन जरूर लगा लीजिए. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. सनराइज आज का हुआ 6:29 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:17 PM. और इसी के साथ आपको बताते चलें जी, कल का दिन कैसा रहेगा. टुमारो वेंसडे विच इज मे द 13th, दिन रहेगा सनी विद हाईज इन द अपर 80s, जबकि शाम रहेगी क्लियर विद लोज इन द मिड 60s. सो ऑल इन ऑल इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल डे अगेन. एंड दिस वेदर फोरकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.

अरिजीत सिंह के गाए हुए कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले हो रहे हैं बॉलीवुड स्पॉटलाइट ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और बस अराउंड एक दो गानों की और गुंजाइश है, लेकिन एपिसोड 2 ऑफ बॉलीवुड स्पॉटलाइट अरिजीत सिंह के ऊपर हम करेंगे नेक्स्ट ट्यूजडे को. लेकिन उससे पहले इट इज टाइम टू गिव यू द करेंसी अपडेट कि यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. आज ट्यूजडे मे द 12th 4:50 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो इज ट्रेडिंग एट 0.85 जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.73 विद रिस्पेक्ट टू 1 US डॉलर. इंडियन रुपी 95.65 पे स्टैंड कर रहा है जबकि पाकिस्तानी रुपी 278.61 पे स्टैंड कर रहा है. नेपाली रुपी इज स्टैंडिंग एट 153.12 जबकि बांग्लादेशी टका 122.91. बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट. इस वक्त अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग एक आउंस गोल्ड की कीमत है जी $4,715.40 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इस वक्त है $151.60. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में आज 9 सेंट की कमी देखने को मिली जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $2.73 की कमी देखने को मिली. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर करेंसी और योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन सुनहरी किरण.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Laptop, charger, coffee, phone, oof. ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
8: एग्जैक्टली exactly. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
7: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
8: आहा, आई कीप दैट पार्ट सिंपल.
7: कैसे?
8: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
7: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
8: या कैरेट लेन काइंड.
9: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product. Now open in Frisco.
10: Tune sunte hi brand click kar gaya na. Just like that, when it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
16: Immigration paperwork se pareshan? Ab tension chhodiye. EasyPetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी। आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N-400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स और प्राइसिंग सिर्फ $30। तो आज ही जाइए EasyPetition.com पर, EazyPetition.com।
17: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
18: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
17: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
18: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
17: ये क्या होता?
18: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
8: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
19: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
20: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
19: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
1: SBI लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
21: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. फैसला क्लैरिटी के साथ.
22: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग लिसनर्स, किद्दा क्या हाल है? दिस इज योर होस्ट प्रौढ़ भाटिया विशिंग यू अ वेरी ब्यूटिफुल इवनिंग, अ लिटिल वार्म कंपेयर टू यस्टरडे, बट इट विल डिप डाउन अ लिटिल बिट इन अ बिट. ग्रेट शो फ्रॉम किरण एज ऑलवेज, एंड आई एम हियर टुडे टू सिट इन फॉर आपका अपना बिंदास मारविंदास, हू इज नॉट हियर. आई बी कवरिंग फॉर हिम दिस वीक एंड कपल ऑफ वीक्स, अ कपल ऑफ डेज नेक्स्ट वीक, सो आपके साथ साथ रहेगा. कल मैंने आप लोगों को बताया कुछ एक दो बातें अबाउट माधुरी दीक्षित, बिकॉज इट्स हर बर्थडे ऑन द 15th, एंड देन ऑल्सो प्लेड सम सॉन्ग्स इन विच यू नो द फिल्म्स डिडंट डू एज वेल बट द सॉन्ग्स डिड रियली वेल. अक्षय खन्ना के साथ उनका जो गाना था बहुत ही अच्छा सा था. सो विद दैट, आज मेरा मूड हो रहा है सलमान खान के बारे में, बिकॉज सलमान खान की इस वक्त न्यूज़ काफ़ी आ रही है. वो ये कि ही इज मेकिंग अ, आई शुड से अ कमबैक, because he just came in Sikandar, which didn't do so well. So from that perspective, yes, a comeback. He's coming in a Raj DK film. And speculations show that Kareena Kapoor was supposed to be cast opposite him. I'll tell you about this film in just a bit. Lekin aaj hai Mangalwar, aur Tuesday ka din hota hai Hanuman ji ka. Toh ye gaana mujhe bahut hi pasand hai. This song has such purity. It has such Bollywood honesty. It has that complete paisa vasool feel jab Salman Khan aate hain big big parde pe is song mein. Aur ye film to wow, jise kehte hain na mashallah, what a movie. With that, I'm going to play the song for you, so let's hit it.

जय जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। क्या गाना है, क्या फिल्म है, जिसमें क्या भाईचारा दिखाया है। विद द ह्यूमैनिटी, दैट वाज द मेन, द कोर ऑफ द होल मैसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म वाज बजरंग भाई जान का यही कोर था कि क्या ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है या नहीं। एंड इट वाज सो ब्यूटिफुली डिपिक्टेड। एक से बढ़कर एक इसमें एक्टिंग थी। इसमें सलमान खान के साथ थी बजरंगी भाईजान में करीना कपूर। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट करीना कपूर नाउ दैट शी वाज नॉट अप्रोच्ड फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म दैट इज बीइंग शॉट, दिस न्यू फिल्म बाय राज डीके। द डुओ इज शूटिंग दिस फिल्म, दे आर डायरेक्टिंग, एंड सलमान खान इज गोना प्ले अ रिटायर्ड और रादर लाइक समवन हु इज ऑलरेडी टेकन हिज हाइटस सुपर हीरो ऑलरेडी। इसको सुनते ही लग रहा है ना कि फिल्म में जान होगी। डेफिनेटली आई फील लाइक दिस विल बी एन अमेजिंग फिल्म। आई कॉन्ट वेट टू सी इट। द मेकअप आर्टिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम धुरंधर, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अपेरेंटली सलमान खान इज ऑलरेडी बिग टाइम इनटू वर्किंग आउट राइट नाउ, एंड ही इज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एंड लुक्स क्वाइट चिसल्ड। इफ यू गो टू द इंटरनेट यू विल सी कितनी उनकी बातें हो रही हैं इस वक्त, कितनी उनकी प्रशंसा हो रही है। एंड अपेरेंटली सलमान खान व्हेन ही टेक्स ऑन समथिंग ही इज डेफिनेटली अ वेरी हार्ड वर्किंग हीरो। उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि this yet to be titled film, it marks a fresh creative direction for Salman Khan, who is expected to portray this retired superhero. And jo aapke Raj, Nidhi Moru hain and Krishna DK, they are absolutely distinctive storytelling ke unke projects hain, jaise the family man aapne dekha hoga, Farzi, Guns and Gulabs and Citadel Honey Bunny. The director duo is currently focused on completing work on the next season of Farzi. एंड ये जो कास्टिंग है इस फिल्म की, जो सुपर हीरो फिल्म है, ये जून 2026 में शुरू हो जाएगी। एंड इज बीइंग पोजिशन एज अ लार्ज स्केल एक्शन एंटरटेनर विद हैवी विजुअल इफेक्ट्स, इंटरनेशनल VFX, सो यू नेम इट, यू नो, इट्स लाइक थिंग्स लाइक द एवेंजर्स, द बैटमैन एंड द लास्ट ऑफ अस। सो दैट्स द काइंड ऑफ विजुअल इफेक्ट्स पीपल हु हैव बीन रोप्ड इन फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म एज वेल। वी डेफिनेटली विश सलमान खान अ ह्यूज रिटर्न विद दिस फिल्म। एंड एक और गाना है और उसके बाद एक रिक्वेस्ट है, दोनों में प्ले करने वाली हूँ। रिक्वेस्ट आने वाली है इस गाने के बाद, एंड दिस वन इज अनदर वन यू सी सलमान खान विद जैकलिन फर्नांडिस इन हिज कंप्लीट एलिमेंट। एंड विद दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाई ड्रीम होम मॉर्गेज। ड्रीम होम मॉर्गेज हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप Since 1998, licensed in all 50 states, their expert team delivers stress-free, tailored mortgage solutions. Make your dream home a reality with Dream Home Mortgage. For details, call Sharmeen or Hussain Panjwani at 972-245-5626. Or you could also visit their website, which is dreamhomemortgage.com.

0: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
1: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
2: Excuse me. It's called being loyal.
1: It's called being predictable.
2: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
1: And what's so special at Neon Cactus?
2: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
1: Not bad.
2: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
1: Okay, this I didn't expect from you.
2: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
3: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
4: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
3: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
4: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
3: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
4: एग्जैक्टली। अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
3: नंबर बोल जल्दी।
4: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
5: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो।
9: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
11: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
12: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
7: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
11: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
11: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
14: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
14: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
15: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.

And listeners, you're tuning into 5 p.m. show right here, Fun Asia Radio, bringing the community together. अगर आप मीरा नायर के फैंस हैं तो आपके लिए ग्रेट न्यूज है, बिकॉज शी इज कमिंग अप विद येट अनदर फिल्म. द फिल्म इज टाइटल्ड अमरी. और अगर आप आर्ट एंथुजियास्ट हैं, देन यू विल बिलीव इट और नॉट, द फिल्म इज ऑन नन अदर देन, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अमरी. अमृता शेरगिल की लाइफ पे बनी हुई है ये फिल्म. इसमें उनकी मदर प्ले कर रही हैं 2-time ऑस्कर नॉमिनी एमिली वॉटसन, वाइल हर डैड इज बीइंग प्लेड बाय नन अदर देन जयदीप अलावत. एंड अलॉन्ग विद दैट, गेस हु एल्स इज एसोसिएटेड विद दिस फिल्म. प्रियंका चोपड़ा जोनस, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ मैडम अजूरी, एज वेल एज शी इज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन द प्रोजेक्ट. We can't wait to see Amri with this new cast, and her name is Anjali Shivaraman. And with that, you know, I do have a song for you. जहाँ मीरा नायर की बात हो रही है तो ये गाना definitely बनता है. ये गाना है ही इतना cool. तो चलिए, I will play that song for you. उनकी फिल्म आपको याद होगा मानसून वेडिंग, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी. ये उस फिल्म का गाना मैं प्ले करने वाली हूँ आपके लिए. और नॉट ओनली दैट, ये जो फिल्म में जो कास्ट किया है, यानी कि अंजलि को, बहुत सारे ऑडिशंस हुए, बहुत सारे लोगों को इसके लिए ट्राई आउट किया गया, बट फाइनली मीरा नायर वॉज एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड बाय अंजलि शिवरामन. आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हर, बट लेट्स एंजॉय द सॉन्ग. एंड आई डू हैव अ फ्यू requests for Salman Khan songs that'll be coming too. Stay right here.

एंड वेलकम लिसनर्स. लाइक आई वाज मेंशनिंग, मीरा नायर की फिल्म अमरी आ रही है जो कि बायोपिक है फेमस लेजेंडरी पेंटर अमृता शेरगिल के ऊपर. और कास्ट किया है इस फिल्म में अंजलि शिवरमन को. हु इज शी? वेल, गेस व्हाट, शी इज द डॉटर ऑफ मलयालम प्लेबैक सिंगर चित्रा अय्यर एंड एन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर. Born in Kerala, she has also debuted on Netflix in the film Cobalt Blue, and we can't wait to see her in as Amrita Shergill, because that's a whole different genre altogether, especially for all you Meera Nair fans. And

Kerala. She has also debuted on Netflix in the film Cobalt Blue. And we can't wait to see her in as Amrita Shergill, because that's a whole different genre altogether, especially for all you Meera Nair fans and for all you art enthusiasts. We cannot wait. Also, she is a model who has worked with designers such as Sabyasachi and Tarun Tahilani. So let's see kya hota hai Amri mein. Bilkul ye cast nahi hai. Aur isme aur bhi log hain. Emma Watson is there along with Priyanka Jonas, who is playing one of the madame in this particular film, as well as she's the executive producer. Let's continue waiting for Meera Nair's Amri. And like I was mentioning, yes, a lot of people were asking about Salman Khan songs. Ye particular gana, iski request aayi hai Arun se. And he says, why don't you play this song? Kyunki ye gana bahut hi pyara hai. Kal Madhuri Dixit ke maine kuch gaane play kiye the. और इस फिल्म में सलमान खान के साथ हैं माधुरी दीक्षित. और ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी. साजन, इट्स नोन फॉर ऑल द लवली सॉन्ग्स इन दिस पर्टिकुलर फिल्म. ये मैं नहीं बोलूँगी कि आप बताइए मुझे कि कौन है सिंगर, क्योंकि आपको राइट अवे पता चल जाएगा कि ये बालासुब्रमण्यम जी हैं. इसका म्यूज़िक दिया है नदीम श्रवण ने. द डुओ दैट वॉज सो अमेजिंग, वट एवर यू नो म्यूज़िक दे गेव, इट यूज टू बी अ ह्यूज हिट. तो साजन के तो गाने डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल हुए. लॉरेंस डिसूजा ने इस पर्टिकुलर फिल्म को डायरेक्ट किया. इसमें संजय दत्त भी थे. तो ये गाना मैं ऑल्सो प्ले कर रही हूँ फरीदा बानो एंड वसीम जी के लिए. एंड दिस सॉन्ग इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड बाय अरुण. एवरीवन एंजॉय.

0: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
7: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी।
8: चिकन बनाना, चिकन बनाना
9: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
10: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
11: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
12: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
11: K2 ड्राइव मतलब?
12: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
11: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
12: 100%
13: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। केटो ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
14: इससे पहले कि आप इसे एक एड समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। याद है आपको जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे? मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी। अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास। बसंत मेला 31 मई, हैगड़ पार्क, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर। स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरीज के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us।
15: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

वेलकम लिसनर्स, ड्राइव टाइम पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज बात हो रही थी सलमान खान की और एक दो रिक्वेस्ट भी आई हैं. इनफैक्ट एक गाना जिसमें वो ऐश्वर्या राय के साथ हैं, ये फिल्म हम दिल दे चुके सनम डिड सो ब्यूटीफुल डिड सो वेल, कुमार शानू की आवाज़ में, कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में, सलमान खान के साथ हैं द ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय. और ये सबा जी ने रिक्वेस्ट किया है इस पर्टिकुलर गाने को. आप पहचान गए होंगे कौन सा गाना है. वैसे सारे ही गाने सुन के एक से बढ़कर एक थे. इसमें उन लोगों का, दोनों का, दे वर डेफिनेटली डेटिंग अराउंड दिस टाइम एंड ही वॉज वेरी मच इन लव विद ऐश्वर्या राय. दे से दैट ही हैज़ स्टिल नॉट गॉटन ओवर हर, दैट्स वाई ही स्टिल सिंगल. एंड ऑफकोर्स आप देखते हैं कि कितनी बातें होती हैं कि ऐश्वर्या राय, उनके अंदर भी ये फीलिंग्स हैं सलमान खान के लिए कि नहीं. आई डोंट नो, दैट्स अ हार्ड वन टू से, राइट. बट ये बात तो पक्की है दैट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इन दोनों की इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया थी. संजय लीला बंसली ने बनाई थी ये फिल्म और जब वो फिल्म बनाते हैं देन ही गिव्स अ लॉट ऑफ अटेंशन टू एवरीथिंग, द कॉस्ट्यूमिंग, द प्रॉप्स एंड एवरी लिटल डिटेल ही पुट्स अ लॉट ऑफ, जिसे कहते हैं तवज्जो देते हैं. तो चलिए ये गाना सुनते हैं और उसके बाद एक क्विज भी आने वाला है आप लोगों के लिए. तो यहीं रहिए, बस बने रहिए. हियर इज द सॉन्ग.

0: जी हाँ, मेरे बेटे करण अर्जुन आएंगे, और ये डायलॉग इतना फेमस हुआ था राखी गुलजार की आवाज़ में। आप लोग ये डायलॉग सुन रहे थे और ये आइकॉनिक डायलॉग बन गया था, और इसी बात पे ये डायलॉग फिर से प्ले करते हुए एक गाना प्ले करने वाली हूँ करण अर्जुन से। हियर इज दैट डायलॉग अगेन लिसनर्स।
1: याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे।
0: Alright, and इस बात पे गाना definitely बनता है। ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, ये फिल्म भी बहुत अच्छी चली थी। चलिए सुनते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान।

कितना प्यारा गाना, वैसे भी मदर्स डे अभी ही गया है, उदित नारायण एंड कुमार शानू जी की आवाज़ में अलोंग विद अलका याग्निक। ये फिल्म काफ़ी बढ़िया चली थी, करण अर्जुन। और लिसनर्स, इसके साथ साथ छोटा सा ब्रेक आने वाला है एंड ब्रेक के उस पार आई डू हैव अ गिव अवे फॉर यू और क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, समथिंग टू डू विद पार्टिसिपेशन एंड देन द बेस्ट कॉलर विल विन फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर। तो वो क्वेश्चन तो मैं ब्रेक के बाद ही आप लोगों से पूछूंगी, जिससे कि आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। और कल मैंने पूछा था कि आपको कौन सा जायका पसंद है और कोई डिश जिसके बारे में आप बता सकें, तो बहुत ही अच्छे अच्छे कॉल्स आए थे। आज भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा, मे बी नॉट फूड रिलेटेड बट समथिंग एल्स। तो यहीं रहिए, कहीं मत जाइए। और अभी ये सलमान खान का जो अभी जो सेगमेंट चल रहा था, जो 15-20 मिनट का था, वो पूरा एक घंटे का ही हो गया। वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स सलमान खान, जब उनकी बात आती है तो उनके इतने फैंस होते हैं कि वो डेफिनेटली कॉल करके रिक्वेस्ट लेते हैं कि भाई एक ये वाला प्ले कर दीजिए, ये वाला प्ले कर दीजिए। आई हैड मेंशन टू यू ही इज़ कमिंग बैक इन अ फिल्म बाय राज डी के, द डुओ डायरेक्टर, जिसमें उनका कम बैक होने वाला है एज अ रिटायर्ड सुपर हीरो। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग बजटेड फिल्म और लोग एंटिसिपेशन से, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से वेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फिल्म की, जो कि होने वाली है ईद रिलीज़, क्योंकि ही इज़ नोन फॉर मेकिंग हिज फिल्म एज एन ईद रिलीज़। तो ये बात है सलमान खान की। और थोड़ी सी देर में क्यूट सा आपके लिए सॉन्ग भी मैं प्ले करने वाली हूँ। बिफोर दैट लेट मी क्विकली गिव यू सम इन्फॉर्मेशन, और वो ये Page 3 E3। इंडीड ब्रेकिंग न्यूज, अभी बात हो रही थी फूड की, सो इट्स नाउ ब्रेकिंग न्यूज है ये Page 3 की। डैलस हैज गॉट अ न्यू फ्लेवर एट Hub 121, इट्स कॉल्ड Page 3 E3, वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर, कबाब्स, चाट, fusion bites and mocktails, vibrant vibes for brunch, lunch or dinner, perfect for foodies, for dates and for flavor chasers. Indeed, visit page3eatery.com for further details. That's page number 3.

जी हाँ लिसनर्स, जो गिव अवे आने की बात होने वाली थी वो वक्त आ गया है। रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से ये है गिव अवे। और इसमें गिव अवे डिशेज में ये है कि आप ड्राई चिली चिकन ले सकते हैं, या चिली बेबी कॉर्न, या डालसिस का बेस्ट बटर चिकन, RHCP's चिकन मक्खन वाला। यू कैन पिक अप द गिव अवे फ्रॉम द फॉलोइंग लोकेशंस एंड दे आर रिचर्डसन, मिकिनी और एलन। यानी कि इसमें फ्रिस्को इस पर्टिकुलर गिव अवे में पिकअप जहां आप कर सकते हैं, फ्रिस्को इज नॉट इंक्लूडेड। तो लिसनर्स, आई एम गोना गो अहेड एंड आस्क यू अ क्विज। आई चेंज माय माइंड, आई विल बी आस्किंग यू समथिंग लेटर एज अ पार्टिसिपेटरी थिंग दैट वी विल डू टुडे, बट बिफोर दैट आई एम गोना आस्क यू अ क्विज। और वो ये है कि ये जो मैं गाना प्ले करने वाली हूँ, और अभी मैं करूँगी गाना प्ले आप लोगों के लिए, आपको ये बताना है कि ये किस में से

लिया है, कहाँ से लिया गया है ये गाना और इसमें कौन कौन थे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, कौन कौन थी और इसे डायरेक्ट किसने किया है. इट्स अ मल्टी चॉइस, नॉट मल्टी चॉइस, उसमें तो एक होता है, बेसिकली इट्स मल्टीपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू. तो डायरेक्टर कौन है, किसमें से लिया है ये गाना और इसमें हीरोइंस कौन सी थी और हीरो कौन था. If you can answer this, then you will be the lucky winner for this giveaway. And here is the song. Studio ka number hai 972-235-5555. This is your host, Parul Bhatia. I hope you're having a wonderful time. Because I sure am really enjoying the show with you and bringing it for you.

0: Funny Asia Radio, you're live on air. Who's this?
1: Yeah, I think that wrong. The song might be wrong. Like the movie might be wrong.
0: Okay, आपने start ही किया wrong से तो फिर क्या बोलूँ मैं?
1: Yeah, it's alright.
0: ठीक है, फिर से try कीजिए. Funny Asia Radio, you're live on air. Who's this?
2: ये आपने start ही किया.
3: Hi, this is Rupal.
0: Yes, Rupal, बताइए.
3: Yes, so इसमें actress थी Manisha Koirala. सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, संजिदा शेख, रिचा चड्डा, शर्मीन सेगल,
0: वाह,
3: और एक्टर्स थे फरदीन खान, शेखर सुमन, फरीदा जलाल, तहा शाह बदूशा एंड अद्यानंद सुमन.
0: एंड हु?
3: अद्यानंद सुमन.
0: अच्छा, ये तो एक और आपने बता दिया. वाओ, माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग.
3: और इसके डायरेक्टर संजय लीला बंसाली, द फेमस, यू नो,
0: ही इज द डायरेक्टर. एंड कहाँ से लिया है ये तो बताया नहीं ना आपने.
3: क्या
0: नेम ऑफ?
3: हीरामंडी. अरे हीरामंडी,
0: हीरामंडी. अच्छा अच्छा, बिल्कुल.
3: या द डायमंड बाजार.
0: आपका पूरा नाम क्या है?
3: रूपल सिंघल.
0: All right, Rupal Singhal, आपने तो बिल्कुल छक्का बे छक्का मार के आपने सारा, मतलब अब कोई भी ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि आपने कुछ भी नहीं छोड़ा जो मैं कह सकती हूँ कि यू नो आपने ये नहीं बताया. आपने ऑफ कोर्स और भी बता दिया, तो दैट इज अमेजिंग. और ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. संजय लीला बंसली ने इसको डायरेक्ट किया था. उनकी नीस हैं शर्मीन सेगो. ठीक है, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन ऑफ एयर लेती हूँ. डोंट गो एनीवेयर. एंड Like I mentioned, you can go to 3 locations, so that's okay with you?
3: Yes, of course, yeah.
0: Okay, I'll just go ahead and play this again for all our listeners and take your information off air.

0: Hi, you wanted to go ahead and give the answer. Please go ahead.
1: Movie name is Hira Mandi. Director name is Sanjay Leela Bhansali.
0: Yes.
1: And इसमें heroines तो बहुत थी.
0: मतलब ये वैसे अवार्ड कोई ले जा चुका है लेकिन आप डेफिनेटली कंटिन्यू ट्राइंग. इसमें क्या है
1: लेकिन ओके बहुत सारे एक्ट्रेसेस थे राइट आई लव द मूवी लाइक यू नो होल सीरीज
0: और सोनाक्षी सिन्हा भी थी इसमें.
1: या सोनाक्षी सिन्हा थी शेखर सुमन भी थे
0: अदिति राव हैदरी थी. Then the hero was Taha Shah Badu Shah and the heroine was Sharmeen Sehgal. But thank you so much for participating. I have another quiz which is not a giveaway of anything but ye quiz hai ki aap kya karte hain relax karne ke liye. To aap soch ke mujhe call kar sakti hain.
1: Okay, sure. Thanks a lot. Yeah.
0: You're welcome. Thank you. Bye.
1: Bye.
0: Panasia Radio, you'll have on air.
2: Hi, good evening.
0: I'm very good. How are you doing?
2: I'm having a very long day. So going home.
0: अच्छा जी.
2: तो एक request थी आपसे.
0: हाँ बताइए. कौन सा सुनेंगे?
2: ये एक singer है सज्जाद अली उनका कोई भी गाना लगा दीजिए अच्छा सा.
0: मतलब कौन सा? वैसे तो बहुत अच्छे-अच्छे गाने हैं उनके.
2: अभी confused हो रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा. एक तो दिमाग में चल रहा है बस बस बस ज्यादा बात नहीं चीप सब
0: वही चला दो फिर
2: चला दीजिए
0: ठीक है मैं आई विल प्ले दैट फॉर यू नेक्स्ट ओके
2: थैंक यू मैम
0: यू आर वेलकम
2: थैंक यू सर
0: फनेशिया रेडियो लाइव ऑन एयर फनेशिया रेडियो यू लाइव ऑन एयर हेलो I think he took the message seriously. By bus, by bus. Zyada baat nahi, chief saab.

0: वेरी नाइस सॉन्ग. अब एक और गाने की रिक्वेस्ट आई है मदर्स डे के लिए. सिनान अपनी मॉम आशा जी के लिए कोई गाना चाह रहे थे, तो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. सीक्रेट सुपरस्टार से लिया गया ये गाना, मेरी प्यारी अम्मी. ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो इस मौके पे ये सेंटिमेंटल इमोशनल गाना डेफिनेटली बनता है. आई एम गोना प्ले दिस फॉर आशा जी एंड सिनान, आमिर खान प्रोडक्शन से सीक्रेट सुपरस्टार. Secret superstar.
1: Hello everyone. आपके likes और comments के लिए thank you. ये मेरा दूसरा video. ये गाना मेरी अम्मी के लिए.

0: What a cute song. Totally.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Oh, haseena zulfon wale jaane jahan.
7: सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फनेजिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। Call Ambreen at 214-909-6601
5: or visit their Instagram, Ambreen Salon, located at Allen and Frisco.
7: Ambreen Salon, style that moves with you.
8: सब कुछ साफ रख सकते हो,
9: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
10: क्योंकि ये कौन बोला?
9: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
11: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500।
12: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डायलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
13: Immigration attorneys in the DFW area. If you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
14: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
15: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
14: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
15: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
16: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
17: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
16: के टू ड्राइव मतलब
17: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
16: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
17: 100%
18: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
19: If you're ever involved in a car accident, remember these important 3 tips. First, stay calm. Second, check for injuries and move to a safe place if possible. Third, gather information by taking pictures, exchanging contact information and insurance details. Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious. so seek medical attention right away. The Law Offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.
0: जी हाँ लिस्टनर्स, सब लोग डिफरेंट चीज़ें करते हैं टू रिलैक्स. तो ये बात थी, मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप क्या करते हैं रिलैक्सेशन के लिए. बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग योर कॉल्स, आई विल आल्सो शेयर कि आज सलमान खान की बात हो रही थी तो वो क्या करते हैं रिलैक्सेशन के लिए. इससे पहले बता दूँ लिस्टनर्स दैट यू कैन शाइन ब्राइट विद डायमंड्स फ्रॉम मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स डैलस ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. Your go-to destination for stunning diamond rings, earrings, necklaces, and more that sparkle for every special occasion and moment. From classic solitaires to contemporary styles, the diamond collection blends superior quality with timeless designs, perfect for engagements, anniversaries, or just celebrating love. Download the mobile app now for more details. That's Malabar Golden Diamonds Dallas on Preston Road in Frisco. And here is what Salman Khan does for relaxation.
8: It's perhaps the best thing that our culture has ever done.

कुछ गाने सुन के जैसे कहते हैं ना, भूख ही लग जाती है, क्योंकि गाने ही ऐसे होते हैं. अब इतना क्यूट सा गाना है जिसमें चिकन की बातें हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन दैट विल रिलेट टू यू. नहीं तो ऑफ कोर्स अगर आप कोई और गाना सुनेंगे चाट पापड़ी का, तो आपको वो मन करेगा कि भाई डिस्को में जाएं, थोड़ा जुहू में कुछ मस्ती करें और खाना खाएं. तो ये सब चल रहा है इस वक्त, क्योंकि लोग इस वक्त घर आ रहे हैं फ्रॉम वर्क, फ्रॉम अ लॉन्ग डे एंड हेडिंग बैक होम, और दे ऑलरेडी होम एंड अबाउट टू हैव डिनर. क्योंकि इंडिया में काफ़ी लेट खाना होता है, 10 बजे तक तो खाना सोच रहे होते हैं कि चलो अब निकालें ना निकालें, बट थिंग्स आर डिफरेंट हियर. इनफैक्ट मेनी फैमिलीज हैव एडजस्टेड टू द लाइफस्टाइल हियर एंड दे विल स्टार्ट ईटिंग अराउंड 6:37. दैट्स नॉट मी, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ गुड हैबिट. कहते हैं ना कि सूरज ढलने से पहले ही खा लो, तो दैट इज़ द बेस्ट, दैट इज़ अ वेरी हेल्दी वे. तो दैट्स समथिंग आई कैन आस्क यू टुमारो. कल मैं आप लोगों से ये पूछने वाली हूँ कि आप लोगों का दिनचर्या क्या होता है, कितने बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, कितने बजे लंच, चाय पीते हैं शाम की, और डिनर कितने बजे करते हैं, एंड एनी टिप्स फॉर अ हेल्दी लिविंग, यू कैन शेयर दैट विद मी टुमारो. ये लास्ट हाफ एन आवर 6:30 to 7 ये सब बातें होंगी, एंड देन टुमारो आज मैं लेके आई थी सलमान खान को, कल वन मोर, सो यू नो माधुरी दीक्षित यस्टरडे, टुडे सलमान खान, so tomorrow it'll be another heroine, and then Thursday it'll be another hero, and then also next week Monday Tuesday I'm covering for Marvin. तो यही सिलसिला चलेगा हीरोइन हीरो का, और बातें होंगी कुछ ऐसी गपशप जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकें, मुझे बताएं आप कुछ जैसे कहते हैं ना टिप्स शेयर करें, थिंग्स लाइक दैट, सो दैट द कम्युनिकेशन एंड द डायलॉग कंटिन्यूज. क्योंकि उस वार्तालाप में, गुफ्तगू में, उन बातों में, वो बातचीत में ही आनंद आता है, निर्मल आनंद, लाइक रेखा वुड से इन द मूवी खूबसूरत. विद दैट, ये बहुत ही कूल सा गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, मोरनी बनके. चलिए सुनते हैं गाना बिफोर आई गेट रेडी टू टेक योर लीव, एंड राइट आफ्टर मी 7 PM पारो विल बी हियर राइट हियर टू एंटरटेन यू. एंजॉय दिस लवली ट्रैक.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर